0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: स्मेल जल्द आ रहा है।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तेल जो कीमतों घट थे न स्टॉक में बेहतरी अचे हाँ फ्रांस बाप ने हुरमज में मदद लाया तैयार है। मुआहदे जो मकसद दोहन के माफ करण या विसारण ना है। ईरानी कौम पैंजी क्यादत का महरूम थी। अमरीका और इसराइल जुल्मन के कदें भी न विसारींदी। आपने हुरमज जा समूरा मामला ईरानी दिसंदो। लबनान समेत समूरन महाजन से जंग खत्म थियण घुर्जे। अमरीका से मुआहदे बाबत ईरान जो बाजाबता मौकफ सामूं अची वो। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे ईरानी पर डी तजमान इस्माइल बाकई चवाए तो असं व्यू व्यू कुर्बानी डेई पैं वतन जो दिफा कर। ईरान आवाम पैंजी फौज जो पूरा साथ दिनो। आलमी बरादरी इसराइल ए अमरीका जो जुर्मन मजम्मत करण में नाकाम रही। अमरीका से मुआहदे से जुमे से जिनवा में सहयू क्यों व्यूं सही का अग ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्क जहा दौरा कंदा। अमरीका के ईरानी आवाम जो भरोसा हासिल करने लाइ डिघो सफर करो पव। ईरान हाने वधिक ताकतवर थी उभरियो आहे। जिनवा में 19 जून से अमरीका और ईरान विच में मुआहदे वाली तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान कंदो। जंग के डुघी रात बाद अमन जो सिज निकली चुको है। कौमी असेंबली में खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे ईरान ए अमरीका लबनान समेत समूरन महाजन से जंग रोकने जो ऐलान किया है। तारीखी मुआहदे की तकरीब 19 जून जुमे वे ढी जिनवा में थी। ये बिन मुल्क में अमन मुआहदों न पर लहाब ए सफारतकारी की फतेह है। मुआहदे से अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा कमला समय सभी के मुबारकबाद दिया तो जैसी ताई मुआहदे जा समर आवाम ते न पहुंचंदा सुख से न वेहंदुस। हुकूमत बजट में हेराफेरी अत करे वही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आगाही। नवीद कमर की ब्रीफिंग का बिलावल भुट्टो अज ऐवान में रिथियल बजट तकरीर मुलतवी कर छी। हुकूमत का अग अंग अखरन में फेर बाबत वजात वठण जो फैसलो। जरन मूजिब एमएलए नवीद कमर पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो के ब्रीफिंग डींदे बुधाओ तो पीपल्स पार्टी से शेयर कल बजट और ऐवान में पेश कल बजट के अंग अखरन में वो फर्क है। ऐवान में यह बजट पेश ना थी जी पीपी के रेखारी वही हुई।

0: सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून 4 पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मनि जी पगार में 10% रिटायर्ड मुलाज़मनि जी पेंशन में 8% ऐं पोरतन जी माहवार अजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 4:30 तलब करे वरितो। सिंध असेंबली जे बजट इजलास खां अॻु बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबिना जो इजलास बि थींदो। नए माली साल में सूबाई तरक़ियाती बजट 800 अरब रुपए खां घटि रहण जो इम्कान ॾिनी वेंदी। वॾो वज़ीर मुलादरी शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में 9 सिंध जी बजट पेश कंदो। मर्दान में तरबियती जहाज किरी तबाह, 2 पायलट शहीद। ISPR मौजूद जहाज मामूल वारे तरबियती उॾाम दौरान किरी तबाह थियो। हादसे जे नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला ऐं बेरिया जो लेफ्टिनेंट ता अबासी शहीद थी वियो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर हथियारबंद फ़ौजनि जे सरबराहनि पारां हादसे जे ॾुख जो इज़हार कयो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां हादसे में ॿिनि जाननि जे नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो। असिस्टेंट स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार रखण जो ऐलान। स्टेट बैंक इजलास बाद पॉलिसी जो ऐलान कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हैदराबाद भरसां सेरीवारी इलाके में फुलेली बाग में बजणा बुडी वया। इतला ते रेस्क्यू टीम पहुंची संदन गोला शुरू कर छी। रेस्क्यू टीम मौजूद बिजण जे बुडण वारी इतला बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कयो आहे। बुधायो पियो वञे त बुडी वरन में नौजवान नारी शामिल आहिनि। लखी गुलाम शाह में सुमरान शाख के आबादगर शाखी शाख की खाटी न थियण और पानी की खोट खिलाफ एहतजाज। आबादगर मूजिब गुजर टीह साल सुमरान शाख की खाटी न थियण सबब मिट्टी से भरजी वही है। वाह के आखिर तक पानी न पुछण सबब जमीनू बंजर थी रही है। पानी पुछड़ तक पहुंचाया वे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में नींगरी और नारी समेत टे जणा मुबैना तौर से अगवा। वारस परेशान बाजियाब करण जो मुतालबो। तंगवाणी भरसा दहन साल की नींगरी मुबैना तौर से अगवा। गोट मोहम्मद रहीम माछी में दहन साल की नींगरी जीनत दी अमीर बख्श माछी के मुबैना तौर से अगवा किया वो। वारसन मूजिब वो सुता पाया हुआ तो खबर ना नींगरी के कड़े वक्त अगवा किया वो है। नींगरी के बाजियाब कराया वे। मीरपुर बुरड़ो के गोट काबुल बुरड़ो में अरड़न वर की नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा थी वही। नारी के चाचे काबुल बुरड़ो चया तो केसर कोसो नारी के अगवा किया है। खेस बाजियाब कराया वे। खैरपुर के नौजवान इमरान लाशारी भी पुरसार नमूने गुम थी वो। वारसन के अगवा जो शक बाजियाब कराने जो मुतालबो।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में टे जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी. तीन तरीके कार से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है GFM 88 के पेज के ऊपर. आने के बाद आपको मिलती है लाइव पोस्ट जो कि पब्लिश की गई है अब से तकरीबन कुछ मिनटों पहले, ठीक है. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000 11 3488. दो सेगमेंट्स होंगे हमारे जिसमें आप लोगों की कॉल्स को रिसीव करेंगे हम, जिसमें से हमारा पहला सेगमेंट होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ. जो बंदा आएगा, कॉल करेगा, सुर लगाएगा, गाना सुनाएगा, वो गाना उसी टाइम पर प्ले कर दिया जाएगा. इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत अच्छा बोलना जानते हों और बहुत अच्छा बोलते हों तो वो जरूर बोले. तो जी जो लोग बहुत अच्छा बोलना जानते हो वो जरूर मुझे ज्वाइन करें बोलो तो माने सेगमेंट में. हमारा जो सेगमेंट होता है बोलो तो माने वो होता है जी 12 बजे के बाद. और 12 बजे के बाद जब वो सेगमेंट हो रहा होता है तो उसमें एक अदर टंग ट्विस्टर मैं आपको बताती हूँ. और वो टंग ट्विस्टर जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोल के दिखाता है वो विन कर जाता है उस सेगमेंट को, ठीक है. तो ये होता है यहाँ पे.

ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलेंगे आगे और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और इसी के साथ एक और सॉन्ग की तरफ हम मूव करेंगे। इस सॉन्ग के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: तू तो मेरा फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: ơi đẹp tiếng đó đi nhà là sân này tôi đi đến.
1: ओके ये इस गाने का टाइटल क्या है वैसे?
0: इंतजार
1: इंतजार इंतजार बस
0: इंतजार बराबर है यार।
1: चले मैं इसको देखती हूँ, सर्च करती हूँ जी। और इसके अलावा कुछ कहेंगे
0: मेरे दोस्त है?
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: एजीए सखर एफएम एजीए
1: सखर की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखे, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरीद हाशमी जो प्रोग्राम तालीम कुरान रोजाना सुबह 7:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
3: अवां मुस्तकबिल जे जदीद डिजिटल महारतन सा पंहिंजे कैरियर के मजबूत बणण चाहियो था, त पोइ तव्हां लाइ खुशख़बरी आहे। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर में नैफटेक ऐं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम स्किल्स ऑफ टुमारो प्रोग्राम तहत मुकमल तौर ते मुफ्त दाखिलाऊं जारी आहिनि। 3 महीननि जे मुख़्तसिर ऐं काराइते कोर्सेस में शामिल आहिनि AI फॉर एवरीवन, फ्री लॉन्चिंग ज़रिए ऑनलाइन कमाई, ग्राफिक डिज़ाइन ऐं वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। जेकॾहिं तव्हां इंटरमीडिएट पास आहियो, ही सुनहरी मौको तव्हांजे लाइ आहे। रजिस्ट्रेशन लाइ पंहिंजे CNIC इंटरमीडिएट जा सर्टिफिकेट ऐं पासपोर्ट साइज तस्वीरूं तयार रखो ऐं अॼु ई दरख़्वास्त ॾियो। ऑनलाइन अप्लाई करण लाइ विज़िट करियो nsis.navdtc.gov.pk या राब्तो करियो 0300-311-3830 ऐं 0301-3865-090। एड्रेस लाल टावर, फर्स्ट फ्लोर, 4 फीट रोड, IBH University, Gate number 2 J Bursan, Sakhar. Yaad rakho, registration ji aakhri tarikh hai 16 June 2026 hai. Seat mehdood hai, tehkare der na kareo. Glamour Institute of Science and Technology Sakhar, tumhare roshan mustaqbil na pehlo kadam. खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारनि जे बेहतरीन करियर ऐं रोशन मुस्तक़बिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मञियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारां नर्सिंग ऐं फिज़ियोथेरेपी जे शोबनि में नए सेशन लाइ दाख़िलनि जो शानदार ऐलान। हाणे पंहिंजे ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM ऐं 5 साल DPD, जॾहिं त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम CMW, CNA ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिणु मौजूदु आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुलु फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मञता असां वटि मौजूदु आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाखिला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 0715635642 ऐं 0300-8311-207।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरे मोहल्ले में बातें हो रही।
1: आशिक मार खा के भी वापस नहीं गया।
2: चला जाऊंगा
1: और अगर मैं रोक लूं तो

तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंपली आवाज।

ईरान जंग अमरीकी साख के खत्म कर छो इसराइल के जवाल जो अमल भी तेज थी वो ईरानी कदस फोर्स के कमांडर इस्माइल क्यानी है शिद तबाही ए संगीन हमलन बावजूद मजामती माहौल पोते न हटो जैं सबब मुखालिफ पोते हटण से मजबूर थे दुनिया हिजबुल्लाह की मामूली ताकत डिठी है हकीकी राग बनिया घनी है ईरानी फौज चवे दुश्मन मुआदे की भनकड़ी कई तो तकड़ो ए सख्त जवाब दिनों वो ईरानी फौज चवे तो दिफा ला तैयारियों जारी रहद वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी गंबर की गोठ सताबू में कार इंजाम हेठ सोट हथा सोट नारी कतल जवाबदार सोनो बारीजो पंज सोट समीना बारीजो के गोलियों हणी कतल कयो पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो पुलिस मौजूद जवाबदार के गिरफ्तार कयो है मामले की जांच बाद केस दाखिल कयो वेंदो हैदराबाद बरसा शहरीवार इलाके में फुरीली वाह में बजना भुली गया इतला रेस्क्यू टीम पहुंची सन गोला शुरू कर छी रेस्क्यू टीम मौजूद बिन जड़न के बुजुर्गों इतलाबाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया है फिलहाल पर्यत परिवरन में नौजवान नारी शामिल हैं लखी गुलाम शाह में सुमरानी शाख के आबादगर शाखी के खाट न थियण ए पानी की खोड़ खिलाफ़ एहतजाज आबादगर मुजब गुजर टीह साल सुमरानी शाख की खाटी न थियण सबब मिट्टी से भरती वही है वाह के आखिर तीन पानी न पहुंचने सबब जमीन बंजर थी रही है पानी पुछण तीन पहुंचाया वे सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में नींगरी ए नारियों समेत टे जणा मुबैना तौर से अगवा वारस परेशान बाजियाब कराण जो मुतालबो संगवाणी भरसा 10 साल नींगरी मुबैना तौर से अगवा गोट मोहम्मद रहीम माछी में 10 साल की नींगरी जीनत की अमीर बख्श माछी के मुबैना तौर से अगवा किया वो वारस मूजिब वो सुता पाया हुआ खबर न तो नींगरी केड़े वक्त अगवा किया वो है नींगरी के बाजियाब कराया वे मीरपुर बुरड़ो के गोट काबुल बुरड़ो मारणा साल नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा थी नारी के चाचे काबुल बुरड़ो चाह है खेसर खोसो नारी के अगवा किया है खेस बाजियाब कराया वे खैरपुर जो नौजवान इमरान लाशारी व पुरसार नमूने गुम वारसन के अगवा जो शक बाजियाब कराने जो मुतालबो

0: देखिए सिलसिले 2 जनवरी से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: It's 12:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International.
3: रुक सर, आपको मेरे साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में 3 तरीके का, सिंपली मैसेज, कॉल्स और कमेंट्स के थ्रू, जो कि आप कर भी रहे हैं। हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा बोलो तो माने, और बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे। आज का टंग ट्विस्टर, परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी। परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी, और ये कहके दिखाएंगे। और ये कहने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300011348, इसके ऊपर कॉल करेंगे।

0: ओके जी, कॉल्स मुझे आना शुरू हो चुके हैं, आप लोगों की तो कॉल्स लेंगे. एंड फर्स्ट कॉलर ऑफ द सेगमेंट, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोरो से पहली दफा कॉल कर रहे
1: हैं?
0: थैंक यू सो मच. और मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे?
1: नहीं सुना,
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज. और कुछ कहेंगे?
1: जी भाई, मैं अपने बेटा है छोटा मोहम्मद अली आपको
0: जानता
1: हूँ, और मेरे फ्रेंड है
0: मोहम्मद
1: कासिम.
0: ओके जी, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. इतना टाइम सोचने में लगाएंगे तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? 03000 11 34 88. एक और कॉलर लेंगे. हेलो
2: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक.
2: खैरियत खैरियत, ठीक ठाक, तबीयत ठीक है
0: जी? तबीयत ठीक है, आपकी ठीक है?
2: अरे ठीक है भाई, थोड़ी बहुत सही, ठीक नहीं है, जुकाम हो गया.
0: जुकाम हो गया, लग भी रहा है आवाज से. अच्छा मुझे बताएं कि आज फिर टंग ट्विस्टर हो रहा है शुरू में या नहीं?
2: जी
0: टंग ट्विस्टर सुनाए?
2: हाँ सुनाएगा, मैं सुनाएगा.
0: अच्छा जी, चलें जी फिर बता दी, सुना दी शुरू में, शुरू में सुनाइएगा. हाँ जी,
2: मुझे तो लगता है मैम कभी कभी के आप मुझसे जो बात करोगे ना वो भी बोलोगे कि फारसोल में बात करो.
0: नहीं अभी तक तो इतना ही है कि खैर टंग ट्विस्टर शुरू में सुनाए तो ज्यादा अच्छा लगता है हमें.
2: चलो जी सुना रहा.
0: यस,
2: परहुन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. परहुन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. परहुन

0: ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. और कुछ कहेंगे?
1: सही आवाज, आवाज नहीं निकल रही, नहीं सही निकल रही.
0: मेरे ख्याल से जुकाम में जो है ना आपको ज्यादा सुर आ जाता है.
1: सुर कहाँ लगा मैम, कहाँ लगाया, मुझे तो कुछ मजा नहीं आया, जुकाम में सुर नहीं लगा.
0: नहीं हमें तो बड़ा मजा आया. खैर और कुछ कहेंगे?
1: और ये कहेंगे कि मैम कल मेरी कॉल नहीं लगी 7 बजे वाले शो में. कॉल मैं मिला रहा था, हालांकि मेरे पास दूसरा नंबर भी था, दूसरे भाई का नंबर मोबाइल था उसका, तो मैं चला के बैठा था ऐसे आइटम.
0: तो
1: उसकी कॉल को ना मेरी, मैंने कॉल मिला रहा था ना, तो दूसरों की कॉलें लग रही थी, मैं कॉल मिला रहा था, पावर आप बता रहा था ये.
0: अच्छा अब ये तो मैं वाकई नहीं जानती कि ऐसा.
1: हालांकि देखो मैं फोन चला के बैठा था, दूसरों की कॉलें लग रही थी, दूसरे बात कर रहे थे जो भी है, मतलब मैं कॉल जब मिला रहा था पावर ऑफ नंबर
0: आई लिटरली डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देती. और अगर नहीं लगी कॉल तो खैर कोई बात नहीं, आज लग गई. ठीक है
1: ठीक है ठीक है
0: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना. और ये थी स्वीट कॉलर सागर भाई, सुरों की कमी नहीं है इनके पास, हर चीज सुर में करते हैं. 03000 1134 Lee.

0: 4 0 1 3 4 8 और इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर. हेलो, चले कॉल ड्रॉप हो गई. 0 3 0 1 3 4 8 नेक्स्ट कॉलर. हेलो, ओके, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: हाफिज
0: सावल. कैसे? ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ है आपकी बाजी. तुम बताओ कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे
1: जी कहेंगे
0: जी
1: कहेंगे बाजी कहेंगे
0: कहें फिर कहें कहें थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा लाउडली.
1: एक चक्कर बताती हूँ.
0: परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवास करवा दी.
1: परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवास करवा दी. परवीन ने पहाड़ी
0: वेरी नाइस. और कुछ कहेंगे?
1: हमारे दोस्त है,
0: जल्दी से हाफिज. इसी के साथ गाने की तरफ मूव करते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: योगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का हमारा सेगमेंट इस वक्त हो रहा है, दैट इज बोलो तो मानी. बोलो तो मानी में एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे हैं और वो जो एक अदर टंग ट्विस्टर है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग कह के दिखाएंगे. परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी, ठीक है ये कहना है. तो आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर कॉल कर सकते हैं. आप लोग नेक्स्ट कॉलर रिसीव करने जा रहे हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? गाजी खान रेंज. भाई दोबारा कॉल लगी आपकी है ना?
1: जी जी.
0: तो मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
1: हाँ जी सुना है.
0: बोलेंगे?
1: जी जी.
0: तो बोले,
1: परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान करवाई, परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान करवाई, परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान करवाई, परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान.
0: वेरी नाइस, आपने तो बड़ा अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है आज.
1: हम तो आप थोड़े में भी सुनाना चाहते हैं, आप सुनती नहीं हो ना?
0: मैं सुनती नहीं हूँ. क्यों?
1: आप एक दिन मैंने बोला है धुन में, आप वो बताओ सर्द में, आप नहीं कैसे बताओ.
0: ओके जी, चले ठीक है. और कुछ कहेंगे?
1: बस अल्लाह आपको खुश रखे और दुआ करो मेरे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं है, दुआ करो
0: चले. अल्लाह पाक उनको बहुत सारी सेहत अता फरमाए. थैंक यू सो मच. आमीन सुमा आमीन. अल्लाह हाफिज. और 03000113488 अभी तक 3 लोगों ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है.

एक और गाना प्ले करते हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक. सो इसको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं.

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखे, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-450192। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
2: अहां मुस्तकबिल जे जदीद डिजिटल महारतन सां पंहिंजे कैरियर खे मज़बूत बणाइण चाहियो था, त पोइ तव्हां लाइ ख़ुशख़बरी आहे। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर में नैफटेक ऐं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम स्किल्स ऑफ टुमारो प्रोग्राम तहत मुकमल तौर ते मुफ़्त दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 3 महीननि जे मुख़्तसिर ऐं काराइते कोर्सिस में शामिल आहिनि AI फॉर एवरीवन, फ्री लॉन्चिंग ज़रिए ऑनलाइन कमाई, ग्राफिक डिज़ाइन ऐं वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। जेकॾहिं तव्हां इंटरमीडिएट पास आहियो, सुनहरी मौको तव्हां जे लाइ आहे। रजिस्ट्रेशन लाइ पंहिंजे CNIC इंटरमीडिएट जा सर्टिफिकेट ऐं पासपोर्ट साइज तस्वीरूं तयार रखो ऐं अॼु ई दरख़्वास्त ॾियो। ऑनलाइन अप्लाई करण लाइ विज़िट करियो nsis.navdtc.gov.pk या राब्तो करियो 0300-311-3830 ऐं 0301-3865090। एड्रेस लाल फ्लावर, फर्स्ट फ्लोर, 4 फीट रोड, IBH University, गेट नंबर 2 जे भरसां सखर। याद रखो, रजिस्ट्रेशन जी आखिरी तारीख 16 जून 2026 आहे। सीटूं महदूद आहिनि, तंहिं करे देर न करियो। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर, तव्हां जे रोशन मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों कदम। खुशखबरी खुशखबरी अहां जे बारे जे बेहतरीन करियर ऐं रोशन मुस्तक़बिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मञियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग ऐं फिज़ियोथेरेपी जे शोबनि में नए सेशन लाइ दाख़िलाउनि जो शानदार ऐलान। हाणे पंहिंजे ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM ऐं 5 साल DPD, जॾहिं त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुल फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मञता असां वटि मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156-35642-0300-83-11-207। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
2: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
2: हफ्ते से जुमरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
2: रब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440।
0: GAFM 88 नेटवर्क।

वंडरफुल सॉन्ग. और फाइनली इसी सॉन्ग के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत. इस सॉन्ग के साथ ही नेक्स्ट भी प्ले करूंगी, तो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट-चैट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हमेशा जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. लिप्स बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार. साइंस आउट. टेक केयर. गुड बाय. बामानी खुदा. अल्लाह हाफिज़.

0: सकरन में सोनारन जो टैक्स वधाइण ऐं कराची में सोनारन जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ एहतजाज, सोनारन कारोबार बंदि करे बांध ते कारियूं पटियूं ॿधी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरन मूजिबि वफ़ाक़ी हुकूमत जे टैक्स लॻाइण सबबि कारोबार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। कराची में सोनारन खे टैक्स न ॾियण तां गिरफ़्तार कयो वियो आहे, खेनि आज़ाद कयो वञे। ऐं टंडो गुलाम हैदर में बिस्प सेंटर ते डिवाइस होल्डर्स ऐं औरतुनि जे वारसनि में झेड़ो, 12 ॼणा ज़ख़्मी। झेड़े दौरान धुरियुनि में जो हिक ॿिए ते लठियुनि ऐं कुहाड़नि जो वसकारो, 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। अदलात ते पुलिस पहुची फायरिंग करे झेड़ो टारियो, ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: नोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़का
3: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

जिंदगी से मौत तक, जहाँ से तहत से खुशी तक, जल्द से जल्द तक, जिंदगी के पहले दिन, जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, खूबसूरतियों को वेलकम करना चाहते हैं और हमेशा के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जनाब इस प्रोग्राम को सुना है और प्रोग्राम को सुनते सुनते आप लोगों को इन चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं और वो वाली खूबसूरती जो हमेशा आप लोगों के साथ मौजूद रहे, तो ये सब कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोगों के बताने के लिए है और बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए प्रोग्राम में। आपका हमारा साथ जो है वो होता है जनाब पूरे पूरे दो घंटों का, यानी कि ठीक अब से लेकर पूरे तीन बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ। तो बिल्कुल जी, इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बतों के साथ आप मेरे साथ मौजूद रहने वाले। तो चलिए जी, प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताते हैं कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जनाब आप जो हैं सही जगह पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह हमने अपने काम भी कीजिए और हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं, तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए कि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस, आपके होंठों पर 440 के स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 के स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब प्रोग्राम में बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी नात के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो प्रोग्राम बिल्कुल जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत होते जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए।

0: लोगों की जनाब क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा फेवरेट नाद मेरी जो कि आप लोगों के समातों की नजर थी जनाब, आपने सुनी आपको बड़ी अच्छी लगी और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब वाइट एश इंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिदरा के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे और साथ साथ जरा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो आज के अगर प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि हमें ना ऐसा होता है कि खुद के साथ जो है ना वो तजुर्बे करने का बड़ा शौक होता है। हम जो भी चीज देख लेते हैं, किसी ने कोई चीज बताई तो हम ना उसे अप्लाई करने में लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई उसे अगर इस चीज का फायदा मिला है तो ये तो हमें भी फायदा देगी, और ये तो हम चीज भूल ही जाते हैं कि भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो आज जो मेरा सवाल आप लोगों से होने वाला है बिल्कुल ये होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि आपने क्या कभी किसी के कहने पर कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसा काम किया है खुद के साथ जिसे करने के बाद आपको ये लगा कि भाई ये तो मैंने सरासर अपने साथ जो है ना वो गलत कर लिया है। अक्सर हम किसी की कोई भी बताई चीज जो है ना वो अप्लाई कर लेते हैं, कोई भी इस तरह की जो है ना रेमेडी फील कर लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो किस भी लिए हो, लेकिन आप जो है ना बस आप लोगों को बताया जाता है आप झट से जो है ना वो सोचने लग जाते हैं कि ये चीज जो उसे फायदा दे चुकी है वो हमें भी फायदा देगी। तो क्या आपने कभी अपने साथ ऐसा किया और वो जो इंसिडेंस हुआ आपके साथ वो फनी था या फिर नुकसानदा था या आपने उसे सीखा, ये चीज आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, अगर आपने टॉपिक सही से नहीं समझा है, क्योंकि कई मरतबा मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो टॉपिक आप लोगों से पूछा है वो मैं शायद सही से आप लोगों को समझा नहीं पाई हूँ। मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछा है सोली सिंधी में बुधाएं था तो छा करी तवा ये ट्राई कयो आ केंजी का भी एड़ी का मतलब को टोटको हो जे जेको तवा के अगले मानो बुधाए जे बाबा मा ही चीज लगाए करे पान ते ही ट्राई कई आई मके हेडो वीआईपी रिजल्ट मिलियो आ आई तहा उहा चीज झट सा पान सा मतलब अप्लाई कयो पान ते उहा चाहे लगाई हो जे आई तवा के जो रिजल्ट मिलियो न मिलियो या तवा सा केड़ो हादसो थियो या छा थियो उ तवा मुसा जेको ने शेयर कंदा। कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले ऐसा होता है कि हमें जो है ना उन चीजों से ना वो सीखना चाहिए होता है, हमें तहकीक करनी पड़ती है, लेकिन कई मरतबा हम वो चीजें कर नहीं पाते जो हमें करनी चाहिए। तो इसी मसले में जो है ना हम कहीं ना कहीं जो है ना वो फंस भी जाते हैं। तो चलें आप मुझे बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और क्या करेंगे जी, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपने नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए हमारे पेज पर, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिलती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ जनाब हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। ओके जी, तो शेयरिंग और कैरिंग कीजिए, हमारी पोस्ट को शेयर करते जाइए और साथ साथ लाइक करते जाइए। जिन लोगों ने नहीं किया कंजूसियां कर देते हैं यहाँ पर आप, जो अच्छी बात नहीं होती। तो चलिए जी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने खुद के साथ ऐसा किया कि आपको किसी ने कोई चीज बताई कि भाई मैंने ये चीज अप्लाई करी है, मैंने ये टोटका ट्राई किया खुद के ऊपर और मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, आपको लगा कि ये भाई जान मुझे भी करना चाहिए। हाँ माश और जीवन भला। ओके जी, सो जल्दी से बताइए। और अब्दुल गफूर कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहावल नगर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। और आकाश अली हमारे साथ हैं लाड़काना से, क्या कहते हैं अली जान पीरजादो फ्रॉम ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, सारे सुनने वालों को सलाम, आप यहाँ कैसी हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ओएसटी मुझे सुनाइएगा मीम से मोहब्बत ड्रामे का, चलिए जी मैं लाजमी आपको सुनाऊंगी। आकाश आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं, पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। नजीर को समय सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम करते हैं। मीर बेवस हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, कुछ आप जन अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं सकरन से, आप हमारा शो ज्वाइन करते हैं, बहुत शुक्रिया। एएम अंसारी कहते हैं खामोशी में राहत होती है, लफ्जों का सफर अक्सर इंसान को तन्हा कर देता है। सलाम टू यू एंड ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शो व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी, जो मुझे आप कभी नहीं दिलाएंगे, शायद क्या पता दिला ही दो, मैं इतनी मतलब सखी तो हूँ कि आपको दिला सकती हूँ। हाँ जी, और ये मीर बेवस कहते हैं कि आज सॉन्ग सुनाइएगा, बिल्कुल आपको सॉन्ग सुनाएंगे। अच्छा, जिनके कल गाने रहे थे ना वो जल्दी जल्दी से अपने गाने जो ना वो मुझे कमेंट में जरा लिख दें ताकि उनके गाने में चला सकूं पूरे प्रोग्राम में। और मोलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है टूफ चूसल से। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। और ये हमारे साथ हैं जी एम, कहते हैं सिडो कल मिश किया बिल्कुल ऐसे जैसे यू ने मिश नहीं किया मुझे। अच्छा, मैंने किया था, मुझे लगा था कि आप कहीं मसरूफ होंगे इस वजह से नहीं आए। चलिए आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू शो मोहम्मद जमान भाई। बख्त अली सिया सुन रहे हैं, हेलो भाई जान। जानी जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद। नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। सबके साथ बातें करेंगे जी, मस्तियां करेंगे, गाने सुनेंगे और आप लोगों को बताएंगे YGH एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सुनते ये इंजॉय कीजिए। और हमारे साथ ही यहाँ पर टाइम हो चुका है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, यही रहिएगा, मैं यू जाकर यू वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। YGH एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय YGH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि खूबसूरत हो जाए।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहे था जिते हुजे तहफुज जदी सहूलियत आई मंजूर
4: ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: माँ छा गया।
1: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स एक कुदरती जुजन माँ तैयार कैल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो बुख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई।
0: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो?
1: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओ जो शानदार ऐलान हाने पंहिंजे बारन के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM आई 5 साल DPD जने ते 2 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ICNA ऐं खास गाल मुस्तहिक शागिर्दन लाइ

0: आए 0300-8311-207। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
0: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
0: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बे औलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
0: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो में प्रखास मटियारी, सकरण मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो इस्तेमाल कीजिए खूबसूरतियों को, वेलकम बोलिए और जरा अपनी स्किन को एक नया चांस दीजिए जनाब खूबसूरत होने का, अपने स्किन को निखारने का और जरा ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का जो प्रोडक्ट आप लोगों की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जाए। तो अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, अगर परेशान हैं ब्यूटी को लेकर, खूबसूरतियां नहीं मिल रही, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपने लगाकर देखे लेकिन कोई बात नहीं जी, टेंशन नहीं लेनी क्योंकि टेंशन लेने से भी आपकी स्किन जो है वो मजीद खराब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बस आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट क्या क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, नाइट क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज फेस वॉश है एंड जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, व्हाइट एज लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है। उसके अलावा जो है ना आप लोगों के लिए लोशन भी मौजूद है व्हाइट एज का एंड आप लोगों के लिए हेयर रिमूवर लोशन भी मौजूद है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। बहुत ही ये अच्छे से प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा जनाब ये खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी खूबसूरती हमें क्यों नहीं मिल रही, तो जरा सी बात ये है कि आप लोग अपनी खूबसूरती के पीछे भाग तो रहे हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है। तो आपने डायरेक्शन जो लेनी है वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से है। तो बिल्कुल आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि फुल नेचुरल जो है ना वो अज्जा से तैयार की गई है। एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और उसके साथ साथ जो है ना ये बहुत ही एक अच्छी सी नाइट क्रीम आप लोगों के लिए साबित होने वाली है जो कि आप लोगों को 5 रातों के इस्तेमाल में बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है नाइट क्रीम है तो रात के टाइम लगाएंगे ना, और लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा। अगर आप साबुन लगाने वाले लोग हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप फेस वॉश लगाने वाले लोग हैं तो आप व्हाइट

ஒத்தெரி. क्या बात है जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें. मैंने आप लोगों से आज सवाल पूछा कि क्या कभी आपने ऐसा किया कि किसी ने आपको कोई टोटका बताया हो और आपने बिना सोचे जल्दी से वो टोटका अपने ऊपर अप्लाई किया और उस टोटके ने आपको रिजल्ट दिए नहीं दिए, ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना कुछ अच्छा करने चाहते हैं लेकिन वो बुरा हो जाता है. मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो बुरा हो जाता है. तो ऐसा आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है, बताइएगा जरूर. और इसके साथ साथ जो है

I love this song. इतना प्यारा गाना है ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं रोज भी इस गाने को प्ले कर सकती हूँ, लेकिन आप बस बोर ना हो जाए. अच्छा तो ये हमारे साथ मौजूद है, एक मिनट आपके मैसेजेस की जाने बात है. अली भाई हमें शिकारपुर से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाईजान, वेलकम करते हैं. वासु भाई हमें सुन रहे हैं, वासु भाई हेलो खुशामदी. और बिलाल अली कहती है अस्सलाम वालेकुम, अच्छी वया माँ भी सिक छकी आई कसम थी अच्छी बुदा वेलकम. नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम वेलकम. मीर बेवस कहते हैं मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे. आए हाय अलग कथा शुरू की थी, अलग कितने खत्म दी गई. अच्छा किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा हाजिर स्मार्ट हाजिर आए स्मार्ट भा तू मोबितू आयन वेलकम वेरो पानी सीट थे. अच्छा बिलाल कहते हैं कि हाँ मुँह टमाटो यूज किया हुआ फेस ते रिजल्ट मिलियो हुयो सुठो. अच्छा सही यो के बुधायो मतलब ताकि कोई कुछ भी चाहिए तव लगाईंदा. चलो ठीक है टमाटो तो ठीक है पर अगर वो एड़ो टोटको हो जाए तवे ॿुधायो वञे तव्हां लॻायो त बाबा ईअं न कंदा कयो. पहिरियां तव्हां ॾिसो त अॻिलो माण्हू जेको आहे त हू सही आहे या न, छो त अॼुकल्ह माण्हू ईअं बि कनि था, ठगियूं बि हलनि थियूं. पर तव्हां छा कंदा, तव्हां सिर्फ़ जेको आहे न पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखंदा ऐं पंहिंजी स्किन ते उहे प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा जेके तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयारु थियल हुजनि. ऐं तव्हां अगरि मार्केट में वञो था त तव्हां ॾिसंदा हूंदा बाबा केॾा मार्केट में अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जेके तयारु थियल आहिनि जेके तव्हांखे कंफ्यूज़ कंदा आहिनि त हाणे मां हीउ वारो वठां या हीउ वारो वठां या ओ हो वारो वठां. त हिन कंफ्यूजन खां तव्हांखे दूरि करण लाइ मां तव्हांजे लाइ मौजूदु आहियां ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में, जीअं तव्हांजी कंफ्यूजन दूरि हुजे, जीअं तव्हांजो माइंड सेट हुजे त असांखे छा वठिणो आहे, मार्केट में वेंदासीं त कहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको असांजे हिसाब वारो आहे, यानी कि तव्हांखे दाणा आहिनि त तव्हांखे छा लॻाइणो आहे, तव्हांखे फेयरनेस क्रीम खपे थी त तव्हांखे कहिड़ी लॻाइणी आहे, तव्हांखे नाइट क्रीम खपे थी त तव्हांखे कहिड़ी लॻाइणी आहे, समुझो था. ऐं अगरि तव्हां पंहिंजे एरिया में अवेलेबल कराइणु चाहियो था त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595. ओके जी, नंबर लाज़मी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके सिटी में अवेलेबल होने चाहिए ये तमाम प्रोडक्ट्स. और वासु भाई कहते हैं सिधो प्रोग्राम जो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे, न न मां इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मुहर्रम जेको आहे सुभाणे खां स्टार्ट थी पियो, त सुभाणे खां वठी जेको आहे न मतिलबु 5 मुहर्रम ताईं मुंहिंजो प्रोग्राम हलंदो, 5 खां वठी जेको आहे न 11 तारीख़ ताईं आई थिंक सो मुंहिंजो मोकल हूंदी, उनखां पोइ वरी तव्हांखे जॉइन कंदासीं.

अच्छा एम अंसारी कहते हैं अभी तक तो किसी की भी नहीं सुनी, बट कुछ दिनों से मुझे सिडो ने डी स्किन एंड वाइट एज के प्रोडक्ट्स यूज करने को कह रही हैं, बता तो रही हैं। अच्छा लेकिन बस दिला नहीं रही, मैं कोशिश करती हूँ आपके इस के ऊपर जो है ना वो मसला जो इसके ऊपर हम सोचते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा ज़ुल्फ़िकार अली कारतियो हमारे साथ मौजूद है मदीना मुनव्वरा से, आप हमारा शो सुन रहे हैं माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम करते हैं। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक अदा मुखे तमाम मुखे बेहतर सुनाणो था अमू अवहां जे चवण ते या ही तो आज कड़ी गाला चिका मतलब सही है। पर हाँ तुम जी को ना वाइट एज जो फेस वॉश लाजमी ट्राई करे दिसजो, आई वाइट एज जी का लवली क्रीमा ने ही हणी दिसजो, ताके जो है दोस्ती वारो सलाह जां दी, भाईपी वारो सलाह जां दी, तमा लाजमी वाइट एज जी का लवली क्रीमा ने उहा ट्राई करे दिसजो। तमा सफा चंदा बाबा पैसा वसूल प्रोडक्ट आ है, एडो जबरदस्त प्रोडक्ट आ, मा पान लगाईंदी आ, तमा ट्राई करे दिसजो। अच्छा दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम चंदा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं क्यूटी। एसन अरबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एसन, चालत आने खुश आयो। अच्छा वफा मुमताज अली खोसो हमारे साथ हैं, गोट रईस गुल हसन खोसो खां, मुमताज भात वहां जो मोहब्बत हूँ प्रोग्राम बुध पर।

आज ही बारी बारी जावा उन लोगों के ऊपर जो लोग वाइट एज के प्रोडक्ट लगा रहे हैं और जो लोग लगाने का सोच भी रहे हैं, समझ रहे हैं। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक दुनिया को जब भी चवे कंधा पैंची मर्जी आयो। वो भी सही है। एम कहते हैं गाना, हाँ जी गाना लगाते हैं आपका। और मुजाहिद भाई क्या कहते हैं, ये वाला गाना आपके लिए लगाते हैं। दर्द दिल कहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत ये है कि अल्लाह ताला आपकी हर वो दुआ भी सुनता है जो आप सिर्फ दिल में करते हैं। और तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जी, कोई इस बात में शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और इमाम बख्श बलोच हमारे साथ मौजूद है, गुड शो, थैंक यू सो मच आपका। और चाचा खालिद चुनी जो हमारे साथ मौजूद है, आपने लिंक शेयर कर दिए, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि आज आपने टॉपिक क्या रखा है, आई थिंक सो आपने सुन लिया होगा अभी तो। अच्छा गजनी के गानों तो याद आए पर गानो गजनी के मिले कौन पयो, सो तवा लिंक शेयर कर छो गजनी ते थोरो कयो। मुझ पे एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, लेकिन ता कयो यो एहसान।

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं आओ तो फुल किट ऑर्डरिंग बट मेरे इरफान सियाल साहब नॉट रिस्पॉन्डिंग मी प्लीज इफ ही रीड माई कॉमेंट सेंड मी. चले मैं इरफान साहब को जो है ना वो कह दूंगी कि वो आपको पूरा किट शेयर कर देंगे, आपको भेज देंगे और वो आपसे कॉन्टेक्ट भी कर देंगे. ठीक है वरियामली जो तो ये हमारे साथ मौजूद कहते हैं सिद्रा आपका प्यारा शो सुन रहे हैं हम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. और ये गुड गुड हमारे साथ मौजूद है, गुड गुड आपका बहुत शुक्रिया. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और दोस्तों को जो है ना वो मेंशन करते रहिए. सैयद बुखारी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को. अच्छा चाचा जो अच्छा जेको तू लगाई पई हुन में जेको बच्चो हुजे थोरो दे आउं ट्राई करे दिसां. बिल्कुल मां तां के जां पर मुजी भेण आई नी हाने वो खणी वई चे मुखे दे तू बियो वठ जा. सो मां हाने जेस्ताई बियो वठा सो त आउं मार्केट जेको ने थोरो घट वेंदी आहां. सो मां सोचां थी त मां पांज लाइ वठां त तांज लाइ वठां. ठीक आ एतरी त सखी आहां इमा अलहमदुलिल्लाह.

हमारे साथ हैं ये लाड़काना की शान, लाड़काना की महान, सिंध की रानी और फारूक जैसे भाइयों के सर का ताज मेरी शहजादी बहना सिद्रा मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर जिंदगी। फारूक अहमद मीरानी फ्रॉम शिकारपुर। फारूक भाईजान बड़े दिनों के बाद हमें पैनल पर नजर आए, तो क्या बात है फारूक भाईजान, आपकी वापसी पर आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में, आप बताएं आप कैसे हैं? और कहते मेरी तरफ से अली रजा मुगल, इमरान अली मुगल, अली डनो मल्हा, नदीम मंगरियो, रियाज शेर को सलाम दीजिएगा। ओके फारूक भाई, और फहा डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाब शाह, कहते सलाम अदी शो तुम्हारा जो नाइस आए मोहब्बतों प्यारे भावन जो। और ये हमारे साथ हैं दिल रुबा, दिलरुबा आपने गजल शेयर करिए, कहती है हाय आपी जान गजल है, फिर किसी याद ने है रात भर जगाया मुझको, क्या सजा दी है मोहब्बत ने खुदाया मुझको, दिन को आराम है ना रात को चैन, कभी जाने किस खाक से है कुदरत ने बनाया मुझको, दुख तो ये है कि जमाने में मिले गैर सभी जो मिला है वो मिला बनकर पराया मुझको, जब कोई भी ना रहा कंधा मेरे रोने को, घर की दीवारों ने सीने से लगाया मुझको, अब तो उम्मीदें वफा तुमसे नहीं है कोई, फिर चरागों की तरह किसी ने जलाया मुझको। वाह वाह वाह वाह, बहुत ही एक अच्छी सी गजल आपने दिलरुबा हमें शेयर कर दी, थैंक यू सो मच। अच्छा वो शायद नबील शौकत जी आवाज में गानो हो, इतना भी गजनी ना यार।

अरे सैयदा बुखारी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आप हमारे साथ। अच्छा ये है हमारे साथ जी सनावला बिरोही। सनावला बिरोही आपको वेलकम करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। गाना आपका लगाने की कोशिश कर देंगे। मीर बेवस क्या बात है जी, आपको शायरी पसंद आई दिलरुबा की। और इसी के साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और डायल करते जाइए 03-15-799-0595। ये नंबर डायल कीजिए, इस नंबर के ऊपर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है, प्रोडक्ट की क्या कीमत है, कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है अभी तक। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो बस आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। इस नंबर के ऊपर आप लोगों को रिस्पांस मिलता है जनाब, तो आप ये नंबर लाजमी डायल करके देखिएगा। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए जनाब, यहाँ पर टाइम हो चुका है न्यूज ब्रेक का, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, यही बैठिएगा, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते जाइए।

अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के 3 करोड़ डॉलर ॾियण वारी ख़बर खे फेक न्यूज़ करार ॾेई छॾियो। डेमोक्रेट्स ते कूड़ी ख़बर फैलाइण जो इल्ज़ाम। समाजी वेबसाइट ते जारी थियल बयान में ट्रंप चयो आहे त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार ठाहिण ते राज़ी थी वियो आहे। अमरीका ईरान विच में मुआदे ते सहियूं बि थी चुकियूं आहिनि। जुमे जे ॾींहुं तशकत करण या न करण बाबति फ़ैसिलो नाहे कयो। जेडी वेन्स तकरीब में ज़रूरु शिरकत कंदो ऐं नायब सदर जेडी वेन्स चयो आहे त सदर ट्रंप जुमे खां पहिरियां बि जेको मुआदो आहे उहो जारी करे सघे थो। 150 जे बदल रस्मी मुआदो आहे। तेहरान खिते में अमुन ऐं इस्तेहकाम यकीनी बणाईंदो, एटमी हथियार बि न ठाहींदो। ईरान जंग अमरीकी साख खे ख़तम करे छॾियो। इसराइल जे ज़वाल जो अमल बि तेज़ थी वियो। ईरानी कदस फोर्स जे कमांडोज़ इस्माइल चांद चयो आहे त शदीद दबाव, वॾी तबाही ऐं संगीन हमलनि बावजूदि मज़मती मोहर पोइ ते नाहे हटियो। जैस व मुख़ालिफ़ पोइ ते हटण ते मजबूर थिया। दुनिया हिज़बुल्लाह जी मामूली ताक़त में ॾी आहे, हक़ीक़ी ताक़त अञा खणी आहे। ईरानी फ़ौज चयो आहे त दुश्मन मुआदे जी भञकड़ी कई त तकिड़ो ऐं सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज चयो आहे त दिफ़ा लाइ तयारी जारी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी तरफ़ हेठि गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवनाई मनसूबे बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जे शमसी तवनाई मनसूबो जल्द मुकमल करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ़ चयो त जेबी लाइ शमसी तवनाई जो समूरो ख़र्च वफ़ाक़ी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जिन जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। मुल्क जे सियासी अमन अमान ऐं मुआशी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवान पारां अमरीका ऐं ईरान मुआदो खिते लाइ बहितरीन करार। हाफिज़ नईम चयो त ईरान अमरीका मुआदे लाइ पाकिस्तान जो किरदारु हमेशह यादि रखियो वेंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त खिते में छिकताण जे ख़ात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो आहे। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल खिते जी मुंड लाइ न विसरण जोॻो किरदारु अदा कयो। वरी वज़ीर सदारत हेठि वसीलनि में वाद ऐं टैक्स उगाइण बाबति इजलास। एक्साइज सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐं नाणे खाते जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। मुरादरी शाह पारां टैक्स उगाइण वारे निज़ाम वधीक असरियत पाइण जी हिदायत। वरी वज़ीर चयो त वसीलनि में वाद अवामी फलाह ऐं तरक़ियाती मनसूबनि ऐं बहितर ख़िदमतनि जी फराहमी लाइ अंतर आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में तोहीन अदालत केस जी ॿुधणी। कमीशन जो चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं कंट्रोलर अदालत में पेश। टिनी आफ़िसरनि अदालत खे आगाही ॾिए चयो त ख़ासि गुज़ार जो इंटरव्यू वठण लाइ तयारु आहियूं, पर ख़सूसी कोटा ते जायूं घटि आहिनि। ख़ाली जायुनि बाबति फ़ैसिलो करणु हुकूमत जो अख़्तियार आहे। अदालत जी दरख़्वास्त गुज़ार खां इम्तिहान वठण जी हिदायत। हुकूमत खे ख़सूसी माण्हुनि जी पोस्टनि बाबति कोटा ते अंदरसानी करण जो हुकुम।

0: आप सुन रहे हैं
1: 88 14 0 29 एड्रेस सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी नज हबीब बैंक पनवाकिल। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत।
3: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: आप सुन रहे हैं।
4: आप सुन रहे हैं।
0: DAFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

ओके जी, बाकी अगर तव्हां नाइट क्रीम लॻाइण चाहियो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे राजी टाइम इस्तेमालु करे सघो था। ही आहिनि प्रोडक्ट जेके तव्हां इज़ीली अप्लाई करे सघो था, तव्हांजी स्किन जे लाइ तमामु घणा सेफ आहिनि। तव्हां लॻायो बाबा, पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधायो। हुन खां अलावा जेको आहे त अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल हुजण घुरिजनि, त तव्हां हुन लाइ डायल कंदा 03-15-799-0595। ओके, मोहम्मा खां सवाल पुछियो आहे त छा कॾहिं तव्हां ईअं कयो आहे त बाबा कंहिंजे चवण ते कोई अहिड़ो टोटको अप्लाई करे छॾियो जेको तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाए चुको हुजे, ऐं तव्हां इहो सोचींदा आहियो त हिन हिकु माण्हूअ ते यकीन करण जे बावजूद तव्हांजी स्किन ख़राब थी वई, ऐं उन माण्हूअ खां पोइ हुन जे माण्हूअ जे टोटके खां पोइ तव्हां कंहिं बि माण्हू ते यकीन न आहियो करे सघंदा। ऐं जॾहिं अहिड़ा सीन असांजी ज़िंदगी में थी वेंदा आहिनि, असां कंहिंजे चवण ते का बि चीज़ कंदा आहियूं, कोई बि अहिड़ो फार्मूलो लॻाईंदा आहियूं, कोई बि अहिड़ी जेका न क्रीम लॻाईंदा आहियूं, कुझु बि अहिड़ो लॻाईंदा आहियूं जेको असांजी स्किन जे लाइ सही साबित न थींदो आहे, त पोइ असांखे न सभिनी प्रोडक्ट खां जेको आहे न इहो नफ़रत थी वेंदी आहे त न बाबा असां इहे न लॻाईंदासीं। छो त तव्हांखे इहो हिकिड़ो ज़हन में चीज़ सेट थी वेंदी आहे त बाबा सभु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, त ईअं न आहे हूंदो। जेका चीज़ तव्हांजे चहिरे ते सूट नाहे कंदी त उन जे पोयां कोई रीज़न हूंदो, कोई कारण हूंदो जंहिं वजह सां उहा शइ जेका न तव्हांजे चहिरे ते रिज़ल्ट न ॾिनो हुजे। त अगरि तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो था कोई बि चीज़, त तव्हां उन चीज़ खां वाक़िफ़ हुजो त हीअ कहिड़े तरीक़े सां तयारु थियल आहे, हीअ ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे न आहे, मर्द मायूं लॻाए सघनि था न, त इहे जॾहिं सभु चीज़ूं तव्हां ॾिसी वाइसी पोप उहा चीज अप्लाई कंदा त पोइ तव्हांखे हिकिड़ो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली सघे थो। सो तव्हां लाज़मी पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश।

वार खोलण जी ॻाल्हि न कयो, गर्मी ॾाढी इहो पॉसिबल ई न आहे मुंहिंजे ख़्याल में. चले जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप कहां से हमें सुन रहे हैं. यहां पर पैनल की जाने बातें तो आपके बड़े मैसेजेस जमा हो चुके हैं और जनाब हमारे साथ मौजूद नहीं चाचा खालिद जुनी जो कहते हैं बेरा सिडो अस्सलाम वालेकुम सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, नूरजहां की आवाज में है, बिल्कुल आपको लगाते हैं ये गाना सुनाते हैं. और ये हमारे साथ है मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है, इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ है फारूक मीरानी भाई, क्या कहते हैं बेस्ट इंसान का बेस्ट शो है, वेलकम आपको दिल से माई क्वीन सिस्टर सिद्रा मुस्कान, थैंक यू सो मच प्यारे भाई जान. और ये हमारे साथ ही फारूक भाई कहते हैं कि बेटा मैंने आज तक किसी के कहने पर कोई चीज यूज नहीं की है. चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है. और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग ढूंढ लोगी, नहीं नहीं गाना आपका मिल गया है, इस गाने के बाद आपका गाना लगाएंगे. और हमारे साथ हैं जी ये असलाम

हाँ भाई हाँ वाव घुरे न गुले पर फरक पवे तो नगाल का जरूरी आए अरीबा हमारे साथ कहती हो आपी गाना तो लगाएं गानों हलायूं था बाबा तांजो कारे विंदासी और ये हमारे साथ फारूक भाई कहते मेरी शहजादी बहना ये मंजू सगरानी का गाना तो लगाइएगा बिल्कुल बिल्कुल भाज ले गानो हलाइंदासी और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा भाजी हमारी सारी फैमिली आपका प्रोग्राम सुन रही है बहुत शुक्रिया आपने नाम तो लिखा ही नहीं अपना तो खुश आमदीद कहते हैं वोट हाची गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए भाषा सगर मौजूद आए कुर्बान बात आंजू मोहब्बत हुआ है और ये हमारे साथ हैं शेर अली फरहान अली जमाली नवाब शाह से प्लीज प्ले नजफ अली ओके अच्छा इरम कहती है अच्छा मेरी दिलबर दोस्त आप हां जी बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा बाजी हमारी सारी फैमिली आपका शो सुन रही है शहबाज जमाली वलद मिस्री जमाली नवाब शाह चलें शहबाज भाई आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ और आपका मैसेज ये जो है ना अभी मुझे पूरा होकर मिला है और आपने एक ही मैसेज को बहुत मरतबा कॉपी पेस्ट कर दिया है सो थैंक यू सो मच पैनल पर जो ना सिर्फ आप एक मरतबा मैसेज कर दिया करें

जी, बहुत ही प्यारा गाना जो कि शमन की आवाज में हमने सुना. एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि मैडम नूरजहां की आवाज में होने वाला है, तो ये गाना भी हम सुनेंगे. और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अल्ताफ बलो, जाग जानी चाचू, कहते हैं प्लीज प्ले अनवर विस्तरो, नकेद करो मेकू, डेडिकेट अजरा को सो, जोयो बलोच एंड यू. ओके ओके, आई ट्राई. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं मुझे बताइए. जैसे अब्दुल्ला महर भाईजान मुझे बता रहे हैं कि बाजी मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूँ. बिल्कुल भाईजान इस्तेमाल कीजिए, थैंक यू. और हमारे साथ इरम कहती आप ही आपकी पड़ोस में तो नहीं है, लेकिन उसके मियाँ इतने अच्छे हैं कि वो जब भी कहती है उसको तो वो लेकर आती हैं उसके मायके. आजकल तो वो खैर जो वो बहुत कम आती हैं, और फिर वो कम आते हैं तो उसके बच्चों की बड़ी याद आती है. तो ये है, जैसे उनकी फैमिली बढ़ती जा रही है तो वो वैसे ही अब मायके आना जो ना उसने कम कर दिया है. तो पता नहीं भाई, वो अपनी जिंदगी में गुम होती जा रही, तो दुआ किया करें उसके लिए और उसके बच्चों के लिए. और प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं पाक आर्मी से आप हमारे साथ हैं. स्वीट शो, प्लीज रहमान मुगल का कोई भी गाना लगाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ जी.

अच्छा ये गाना पता नहीं क्यों इतना जल्दी खत्म हो गया, मैं वरी सोच रही थी कि ये गाना आपको एंजॉय करने देते हैं, चलिए ये गाना था ही खैर इतना, और इसके साथ साथ ये गाना मैंने लगा लिया है, टाइम हमारे पास जाके थोड़ा सा बचा है, मैं वरी इंतजार कर रही थी कि भाई हम ब्रेक की जानिब जाएंगे तो सुकून से आपको गाना सुनने देते हैं। और आजकल जो है आजकल ना जाने क्या हुआ मुझे

के लिए सो जरा हम ढूंढते हैं कि ये क्या वजह है कि आजकल हमें क्या हो चुका है यहाँ पर जो है वो. आप जरा ये गाना सुनिए, गाने के बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में. आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरत होती रहिए.

0: खजूर,
1: सिंध का बढ़ाती है मान,
0: सखर बैराज की शान,
1: और अब आवाज की सूरत बनी है
0: सखर की एक नई पहचान।
1: जीए सखर, FM 88,
0: सखर की आवाज।
1: जीए FM 88,
0: सिंध की आवाज।
2: मुस्तकबिल जे जदीद डिजिटल महारतन सा पंहिंजे कैरियर के मजबूत बणण चाहियो था त पोइ तव्हां लाइ खु़शख़बरी आहे। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर में नैफटेक ऐं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम स्किल्स ऑफ टुमारो प्रोग्राम तहत मुकमल तौर ते मुफ़्त दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 3 महीननि जे मुख़्तसिर ऐं काराइते कोर्सिस में शामिल आहिनि। AI फॉर एवरीवन, फ्री लॉन्चिंग ज़रिए ऑनलाइन कमाई, ग्राफिक डिज़ाइन ऐं वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। जेकॾहिं तव्हां इंटरमीडिएट पास आयो त ही सुनहरी मौको तव्हां जे लाइ आहे। रजिस्ट्रेशन लाइ पंहिंजे CNIC इंटरमीडिएट जा सर्टिफिकेट ऐं पासपोर्ट साइज तस्वीरूं तयार रखो ऐं अॼु ई दरख़्वास्त ॾियो। ऑनलाइन अप्लाई करण लाइ विज़िट करियो nsis.navdtc.gov.pk या राब्तो करियो 0300-311-3830 ऐं 0301-3865-090। एड्रेस लाल टावर, फर्स्ट फ्लोर, 100 feet road, IBA यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 2 जे भरसां, सखर। याद रखो, रजिस्ट्रेशन जी आखिरी तारीख 16 जून 2026 आहे। सीटू महदूद आहिनि, तंहिं करे देर न करियो। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर, तव्हां जे रोशन मुस्तक़बिल ना पहिरियों कदम।
3: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
2: खु़शख़बरी, खु़शख़बरी अव्हां जे ॿारनि जे बहितरीन करियर ऐं रोशन मुस्तक़बिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मञियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ सखर पारां नर्सिंग ऐं फिज़ियोथेरेपी जे शोबनि में नए सेशन लाइ दाख़िला।

आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो बिल्कुल आप ये सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और जनाब शामली प्रोग्राम होते जा रहे हैं. अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें बताइए, आप हमें 881 पर ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमें कमेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो जी ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जहाँ पर आप आते हैं और आप हमारे प्रोग्राम में जो है ना हमें ज्वाइन करते हैं. इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि हमें पता चले कि भाईजान आप हमारी पोस्ट के साथ मोहब्बतें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग करने से जो है ना हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक जाएगी और जितनी ज्यादा लोगों तक जाएगी तो जाहिर सी बात है उतने लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जा रहे हैं. आप लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है जो प्रोडक्ट ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि हमेशा आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखते हैं.

bir sahibi baba. बस निभा जरूरी है समझो तो अच्छा कंडीशंस क्या है ये नहीं जान रहे बस ये जान रहे हैं कि भाईजान आप इस्तेमाल कर रहे हैं डे स्किन ब्यूटी क्रीम समझ रहे हैं तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में

नहीं अवेलेबल तो डायल कीजिए 03-15-799-0595 जल्दी जल्दी से ना ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके गोठ में भी ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये अवेलेबल होने चाहिए. और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा नंबर के ऊपर तो आप मुझे बताइए ना, हम शिकायत लगाएंगे आप लोगों की, समझ रहे. और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा भाई, एडो जबरदस्त प्रोडक्ट आना अगर तुम एक दफा इस्तेमाल करे ना पहुंचा वाह वाह सिदरा पाटी सफा सही पीछे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटमिन ई बीड्स ए माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन से तैयार थे लाहे जिनजे इस्तेमाल सा तमाजी खूबसूरती जगाए ना अन्या वदंदी वेंदी तमाजी चेहरे जी खूबसूरती जगा किथे गुम थी वया है तो वा ता के वापस मिली वेंदी ए तमाजी चेहरे ते निशान आहेन एकनी प्रॉब्लम आहे जेके भी मसला है नो सब खत्म थी वेला ए तमाजी स्किन थी वेंदी गोरी चिट्टी. सो जरूर तुम ट्राई करी दिसो जी तुम्हें सफा वीआईपी रिजल्ट मिले समझो था. उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से तुम डी स्किन फेस वॉश भी मिली रो है जो तुम इतना भी वही पे करीबी जनरल स्टोर तुम परचेज कर सो हाँ तो हर जगह से अवेलेबल थी वाया ही प्रोडक्ट तो तुम लाजमी अवेलेबल थे तो उतना वही परचेज क्योंकि ना अवेलेबल तो तुम नंबर से लाजमी डायल करते रबो कर ठीक है. उन्होंने दसो तो तुम किथा बुदो पाया प्रोग्राम किथे किथे ही प्रोडक्ट अना तीन अवेलेबल न थे. ओके सो प्रोग्राम जो लास्ट लिंक है लास्ट लिंक में असा प्यारा मानू मतलब इंतजार कन प्याजे की वेचारा शुरू का वेठी सुबह का वेठी वेठा है असान जो गानो हलनो तो बिल्कुल सबनी जो गानो हलाइंदा सी बाबा मुझे यहाँ कोशिश होंगी तो सभी जो सॉन्ग्स ट्राई कौन लगाई लिस्ट में सभी जो गाना बुधों सब ना हैप्पी हैप्पी रहो इंजॉय कर जिंदगी के तो सभी जो गाना जो अस बुधंदी. सो एक बो गो है जो असानी लिस्ट में मौजूद है जो शाहिद बब्बर की आवाज में थे शाहिद बब्बर की आवाज में ही वो सॉन्ग बिलाल फरमाइश कई शायद असा.

और इतने डरे कि अब तक घर वालों के प्यार से महरूम रहा हूँ। भाई मुल्तानी मिट्टी मेरे फेस पर भी सूट नहीं करती है, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो फेस के ऊपर अच्छी होती है। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके चेहरे पर वाकई रिजल्ट देती हूँ, लेकिन ज्यादा लोगों के चेहरे पर नहीं देती है। तो इसका मैं भी कुछ लोगों को ये नहीं कहूंगी कि भैया लगाएं अच्छी चीज है, ना बाबा ना लगाए, मुंह ते तो असर कौन करे। बाकी जगह तां जे चेहरे अगर करे थी तो पो तां करे सको था, पर सुठो यो आए तो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राई करे दे जो समझो था। अच्छा वो बियो गानो, चलो मां भी समझा पे तो बियो गानो हो, पर अगर मु यो लिखी करे जेको ता लिखियो ना वो सागो लिखी करे मां YouTube करियो ना तो उन मुखे हे वारो गानो कढी दनो, सो मां ही वारो हलाए छलो। मुखे लगो मता शायद मां मुजो दिमाग थोड़ो गलत सोचिन हो जो, पर तमा मिस सही था चो त आइंदा तमा मुखे जगा ना लिंक शेयर करे छलिंदा गयो। उन खाना बस सनावला बिरोई हमारे साथ ही और कहते हैं आपका शो पहले साइलेंट होकर रेडियो पर सुन रहा था, अब कमेंट करके शामिल भी हो रहा हूं। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में वेलकम करते हैं आपको जनाब, हम भी आपको दिल से वेलकम करते हैं। और चाचा खालिद आपने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मुजाहिद बोजार कहते हैं जादू भरी तेरी नजर, अज ताजे गाने के जगह ना थोड़ी मोकल कराई सी। अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं। आकाश अली हमारा शो सुन रहे हैं, भाईजान को वेलकम करते हैं।

लगता। अरे ये गाना भी बहुत अच्छा है वाकई। ओके जी, ये हमारे साथ है फजीला सिंधी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं प्यारी को। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। मेरी सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को। ओके जी,

और फजीला आपका जो ये जे वर्ड वाला मैसेज, ये मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। और हमारे साथ मौजूद दीदी हमारी प्यारी लुबी, कहती हैं सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, सजो जाने क्या हाल है, मैं भी आके साथ साथ हूँ, तमाम बेहतरीन शो और नाइस सिंधी सॉन्ग, और सजो कोई भी सॉन्ग मेरे नाम तो करो, हाजिर हाजिर बाबा। और कहती है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज, हाँ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज चेंज हो गई, और मैं मानती हूँ मेरी आवाज चेंज हो गई, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि मोटी हो गई, कुछ कह रहे हैं पतली हो गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, ये तो मैं भी जानती हूँ, चलें अच्छा है या बुरा ये तो आप ही बताइए। बस अब जो है सो है, कुछ चीजें वाकई ऐसी होती ना जिनके ऊपर हमारा अख्तियार नहीं होता, और वो हो जाती है तो बस हो ही जाती है। तो ये मेरी आवाज है जिसके ऊपर मुझे नहीं पता कि ये मैं ऐसे चेंज खुद करती हूँ, खुद नहीं करती नहीं हूँ, बल्कि ये हो जाती है। तो ये जो है ना वो बस ठीक है, आप रहने दें इस बात को, आप डी स्किन ड्यूरिंग क्रीम लगाएं, सही है वो गाल कहो जी का फायदे जी।

अच्छा शहबाज जमाली नवाब शासी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जुलरी का खालिक लाशारी कहते हैं, अंबर का मिठी यदि चाय पिया पयो शो भी बुधा पयो सलाम कुर्बान खास के लिए ओके प्यारा भा मोहब्बतूं तमाम जो जाग जानी चाचू हमारे साथ हैं और आपने सेकंड गाने की फरमाइश करी, यहाँ पर पहला गाना नहीं आपका प्ले हुआ। बहुत शुक्रिया। और आपने डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम डॉक्टर समीना आमिर ओके जी। और इमरान भाई कहते हैं कि बाजी जमाने वारा छा भी चवन असां तवां जी मर्जी हलाईंदासी, बिल्कुल तवां मुंजी मर्जी हलाई तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो, मां तांखे कॾहिं बि ग़लति मशवरो न ॾींदा इहो तव्हां भले मूंखां लिखाए वठो। अगरि मां तव्हांजी स्किन जी जेको आहे न फिकर कयां थी त तव्हांखे बि थोरो पंहिंजे चहिरे जो ख़्यालु करणु घुरिजे ऐं तव्हांखे जेके प्रोडक्ट ॿुधाया वञनि था उन्हनि खे थोरो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, ट्राए कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी न त वाक़ई ही प्रोडक्ट कम जो आहे, सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो। ओके जी, उनखां अलावा सजाद अली जमाली हमारे साथ नवाब शाह से कहते हैं सॉन्ग लगाइए ममताज मोलाई का, ममताज मोलाई ज़रा छुट्टियों पर गए हैं। अच्छा शहबाज जमाली भाई आपने गाना लिखा है, चलिए मैं कोशिश करूंगी आपका गाना लगा दे। ओके जी, काशिफ अली जमाली हमारे साथ हैं, काशिफ भाई आपको वेलकम कर देते हैं। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन वारन जो शैम्पू भी अवेलेबल आहे, नन सिर्फ फेस वॉश ऐं क्रीम आहे बस प्रोडक्ट, अगरि तव्हां इहे लॻाईंदा सुठो रिस्पॉन्स उन्हनि खे मिलंदो त पोइ फेस वॉश त आहे पर उन सां गॾु जेको ॿिया प्रोडक्ट जेके तव्हांखे नीड आहे उहे सभु ट्राए कंदा तव्हांजे लाइ ठाहींदा, सही आहे इहे त लॻायो जेके ठाहिया अथऊं।

अच्छा वरियामली जतोई कहते हैं सिद्रा आज सारे सॉन्ग्स आपने बेस्ट लगाए बहुत शुक्रिया जी. बिलाल कहते हैं कुछ जख्म आंखों में आंसू नहीं रूह में खामोशी छोड़ जाते हैं. ये तो बिल्कुल सही बात है. अली मोहम्मद भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं. अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच.

अरे किशोर भाई कहते हैं अदी मुझी कंपनी से बिल्कुल सामू लाड़काने जो बस इंदो आहे यकीन कयो सुबह कंपनी अचान तो बस डिसी तू याद इंदो आहे पंज बजे वापस वन्या तो तदे भी तू याद अची तो हाँ अदा बस से हटाया या कंपनी छा तुम कुछ भी न कयो याद अचान तो सुठी गाल बहाने तार रोज प्रोग्राम में अचो था।

बात है जी, प्यारा गाना। और अरशद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों के बाद। बिल्कुल जी, बहुत अरसे के बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको वेलकम करते हैं। ओके जी, इस गाने की फरमाइश थी, ये बहुत प्यारा गाना है।

अच्छा बिलाल लिखते हैं कि हॉस्पिटल भी ससुराल की तरह है, जहां ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ससुराल जाने के लिए तो लोग मेरे ख्याल में एक्साइटेड होते हैं। राशिद खोड़ो कहते हैं कि फुर्सत मिले औरों से निगाह इधर भी कर लेना, हम भी तेरे। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू राशिद भाई जान। और ए एम कहते हैं हाँ सही है, समझ गए। और इमदाद अली बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम इमदाद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा राशिद भाई कहते हैं कि अरे आपकी आवाज चेंज नहीं हुई है, कौन कह रहा है आपकी आवाज मोटी हो गई है? नहीं, कुछ कहते हैं लोग जो आते हैं बड़े दिनों के बाद सुनते हैं, मुझे लगता है चेंज तो हुई है लेकिन अब मोटी हुई है पतली है ये मैं नहीं जानती। चलें कुछ तो हुआ है, खैर जो भी हुआ है सही है, इंसान जैसे बड़ा होता जाता है तो जाहिर सी बात है।

बहुत ही प्यारा गाना आप सुन रहे हैं। और किशोर भाई ने एक शायरी भेजी है, लिखते हैं कि एक रात एक बात लिखूंगा, एक रात एक बात लिखूंगा, तुझे मेरे साथ लिखूंगा, बड़ा सा चांद और ठंडी हवाएं, फिर तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगा, हकीकत में तू कभी मिलेगा या नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा, मेरी किताब में सब मेरी मर्जी का होगा, तुम सो जाओगे जब मैं दिन को रात लिखूंगा, एक रात एक बात लिखूंगा, तुझे मेरे साथ लिखूंगा।

अनवर भाई सही था चो. वैसे माँ नंढपण में सोची नहीं हम तो माँ वॾी थियां जल्दी वॾी थियां मैंने बहुत कुछ करना, लेकिन अब जब बड़ी हुई हूँ तो कहती हूँ कि भाई नंढड़ा भला होया सी. जिम्मेदारियों ने जो है ना वो इतना मतलब उदास कर दिया है. जिंदगी ऐसे चल रही है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या है लाइफ में, क्या थे क्या हो गए हैं. लेकिन सही है भाई, हर चीज में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए. और अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका भी. और इसी के साथ यहाँ पर टाइम हो चुका है कि आप लोगों से हमें इजाजत ले. इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो मुलाकात है वो कल वाली प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है प्रोग्राम. सो अपना इन्ना शाला ख्याल रखिएगा, और कहीं पर कोई गलती हो गई है तो हम माजरत ख्वाहें. कोई भी ऐसा लफ्ज कह दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माजरत कर देते. सो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप इस्तेमाल करते रहिएगा, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए. और बिल्कुल आपका हमारा साथ यहीं तक था. सो मोकलानी नाही बाबू सिंह सलामत, साथ सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

सुभाणे पेश थींदड़ सिंधी नए माली साल जी बजट में छा हूंदो केटीएन न्यूज तफ़सील हथ करे वरिता। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रुपियनि जे कट लॻायो वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपियनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रुपियनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम में 40 अरब रुपियनि जो कट लॻंदो। नए माली साल में ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुगो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सूबे जी गैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। नए माली साल जी तरक़ियाती बजट में नई स्कीम शामिल न करण जो फ़ैसिलो। सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाइन लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 64 अरब रुपियनि जी तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो काथो लॻायो वियो आहे। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंधी नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जी मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99.76 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 7.94 अरब रुपया रखण जी तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। सिहत खाते लाइ 17.43 अरब ऐं तालीम खाते लाइ 25.86 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। आबाशी खाते लाइ 3.80 अरब, वक्स ऐं सर्विस खाते लाइ 31.59 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40.86 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सिंधी नए माली साल 2026-27 बजट सुभाणे सिंध असेंबली में पेश थींदी। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह बजट पेश कंदो। असां ईरान में का बि सड़पकारी न करे रहिया आहियूं। मुंहिंजे ख़्याल में तेहरान सां इंसाफ़ ते बदल मुआदो थियो आहे। अमरीकी सदर ट्रंप जे कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानीअ सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल अमरीकी सदर चयो त मुंहिंजे लाइ सभ खां अहम ॻाल्हि ईरान वटि एटमी हथियारनि जो न हुजणु आहे। ईरान जंग अमरीकी साख खे ख़तम करे छॾियो। इसराइल जे ज़वाल जो अमल बि तेज़ थी वियो। ईरानी कदस फोर्स जो कमांडर इस्माइल कानी चयो आहे त शदीद दबाव, वॾे तबाही ऐं संगीन हमलनि बावजूदि मज़ामती मोर पोइ ते नाहे हटियो, जंहिं सां मुखालिफ़ पोइ ते हटण ते मजबूर थिया। दुनिया हिज़बुल्लाह जी मामूली ताक़त ॾिठी आहे। हक़ीक़त ताक़त अञा घणी आहे। ईरानी फ़ौज चयो आहे त दुश्मन मुआदे जी भनकड़ी कई त तकिड़ो ऐं सख़्तु जवाबु ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज चयो आहे त दिफ़ा लाइ तयारियूं जारी रहंदियूं।

ईरान ऐं अमरीका में मुआदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वकार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सफ़ारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम वेंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध

0: मेरा फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अफवाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
1: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी, ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
1: DHMS सिंध,
2: RHMP इस्लामाबाद,
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
2: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
2: कमर दर्द,
1: अर्कुल निसा,
2: जोड़ों का दर्द,
1: हेपेटाइटिस,
2: वजन की कमी या ज्यादती,
1: बे औलादी,
2: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
2: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
2: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक,
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
2: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
1: राब्ते के लिए
2: 0326-22-00-440।
3: GA FM 88
4: सिंध की आवाज।

ये मीरपुर खास एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सब दोस्त हमारे और सेगमेंट है फैमिली टोट के इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कुछ घरेलू टोटे की स्मेल यानी बू खत्म करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका लहसुन प्याज मछली के बाद बर्तनों से आने वाली नागवार बू को दूर करने के लिए आपने उन बर्तनों में को गर्म पानी में डालकर उससे जो है कुछ देर रखना है उसके बाद उन बर्तनों को धो लेना है तो उससे जो है बर्तनों से इन तमाम अशिया की जो स्मेल होगी ना खुशगवार बू होगी वो फिनिश हो जाएगी खत्म हो जाएगी। एक और तरीका भी है आपने सिरका पानी में मिलाकर वो भी इन बर्तनों में डाल देना उससे भी जो बर्तनों की स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। दुबई एयरपोर्ट पर लावारिस सूटकेस खोलने पर अमले के होश उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर हो गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम सिक्योरिटी अमला उस वक्त शदीद हैरत और खौफ के साए में आ गया जब एक लावारिस सूटकेस की तलाशी के दौरान उस सूटकेस से कपड़ों या कीमती सामान के बजाय रेंगते और जहरीली जानदार बरामद हुए। दुबई एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने लावारिस सूटकेस से बड़ी तादाद में जिंदा जहरीले जानवर बरामद कर लिए। एयरपोर्ट टर्मिनल पर पड़े इस मशकूक बैग को जब सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए खोला गया इसके अंदर मौजूद मंजर को देखकर वहां एहलकार तैनात हैरान हो गए। वहां जो तैनात एहलकार थे शॉक्ड हो गए बैग के अंदर से इंतहाई गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ इस्लाम के अशरात और रेंगने वाले जानवर रखे गए थे और गिनती करने पर मालूम हुआ उसमें किसी चिड़ियाघर जितना सामान मौजूद था। सूटकेस के खुफिया खानों से 129 जिंदा छुपकलियां बरामद हुई। 36 जिंदा बिच्छू मिले जो कि किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकते थे। इसके अलावा बैग को लावारिस छोड़ने वाले नामालूम स्मगलर ने इस बैग में 8 जिंदा सांप 50 मेंढक भी छुपा रखे थे। बताया गया इतनी बड़ी तादाद में जंगली जहरीले जानवरों की बरामदगी के बाद एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। इन तमाम बरामद शुदा जानवरों माहौलियाती इदारों से राबता करके ये जानदार उनके हवाले कर दिए गए। कस्टम और एयरपोर्ट पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों फ्लाइट डेटा की मदद से यह सूटकेस वहां छोड़ने वाले फरार होने वाले नामालूम मुसाफिर की तलाश शुरू कर दी ताकि ये मालूम किया जा सके ये खतरनाक खेप किस मुल्क से लाई जा रही थी और इसका मकसद क्या था। यानी कि छुपकली और

सिर्फ एक मिनट में 1.25 किलो शहद खाने का हैरान कुन आलमी रिकॉर्ड। एक नौजवान ने 60 सेकंड यानी एक मिनट के कलील वक्त में 1.25 किलो शहद खाकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। वैसे तो दुनिया में मुख्तलिफ आलमी रिकॉर्ड बनते रहते हैं, कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैरान कुन होते हैं जिनको देखकर यकीन ही नहीं आता। ऐसा ही एक दिलचस्प रिकॉर्ड जर्मनी में बना, जहां आसबर्ग शहर में आंद्रे ऑल्टलोफ नामी नौजवान ने सिर्फ एक मिनट के कलील वक्त में 1.25 किलोग्राम से जायद शहद खाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया, अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड करवाया, दर्ज करवाया। नौजवान के रिकॉर्ड कायम करने की इस कामयाब कोशिश के नतीजे में उनके पेट में 4,000 किलो कैलोरीज 1 किलो से ज्यादा शुगर गई, जो कि माहिरीन खुराक की योमिया तजवीज करदा खपत से 20 गुना ज्यादा है। और वाजे रहे कि आंद्रे और ऑल्टलोफ नामी ये नौजवान

गैर मामूली चैलेंजेस के लिए ऑलरेडी काफी फेमस है। जनाब शोक का कोई मोल नहीं है, खासे खाते पीते नजर आ रहे हैं ये, लेकिन इंसानी जान को खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। रिकॉर्ड्स बनाना ठीक है, अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन ऐसे रिस्की हरकत से गुरेज और परहेज करना चाहिए। खैर जनाब, उनकी लाइफ उनकी मर्जी, सानू की। ओके जी, और हमने जो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर आपका कोई बहुत ही करीबी प्यारा अजीज आपसे झूठ बोल रहा हो और जबकि आपको हकीकत मालूम हो, सच मालूम हो, तो उस सिचुएशन में ऑन द स्पॉट उस वक्त आप क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, ये बताने के लिए आपने डायल करना है 03136615688। SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में लिखना है MP के, एक स्पेस देना है, नाम पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद होगा छोटा सा तशहीरी वक्फा, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: अहां मुस्तकबिल जे जदीद डिजिटल महारतुनि सां पंहिंजे कैरियर खे मज़बूत बणाइण चाहियो था त पोइ तव्हां लाइ ख़ुशख़बरी आहे।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: हो। अगर कोई इंसान आपसे झूठ कह रहा है, आपका बहुत करीबी और आपको सच मालूम हो, तो आप क्या करेंगे उस मौके पर? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, मैं गिलोरी का खालिक मैसेज करा
0: रहा हूं। अदा क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? अच्छा, फिर अगर वो ना समझे तो? अच्छा, भले वो बहुत ही प्यारा हो, आपको बहुत अजीज हो, बहुत दिल के करीब हो, आप उससे अल्लाह हाफिज करेंगे? अच्छा ठीक हो गया, चले जी, ये तो आपकी राय हम तक पहुँची है, अब दोस्तों के नाम शामिल कर लें। ठीक हो गया, ओके। और जनाब गोट आलम खान जरवार से मोहम्मद अजीज जरवार, एक मरतबा समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम भी उसे जो है उसके हाल पे छोड़ देंगे, क्या कर सकता है इंसान। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मतलब दोस्ती रखेंगे उस इंसान से, उसको जो है मतलब उससे एहतियात नहीं करेंगे, आप कहेंगे ठीक है तुम बोलते रहो झूठ भले। चले ठीक है, चले ठीक हो गया, ओके अदा, बहुत शुक्रिया, आप शाम में प्रोग्राम हुए, ओके जी। और जनाब ये जो है अपना क्या कहते हैं अदा अजीज, आपका मैसेज हमें मिला, बहुत शुक्रिया, दरमियान में कॉल आ गई थी, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने बताया, आप भी हमें सुन रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, खुश आमदीद कहेंगे, कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे अदा आपको, क्या हाल है आपके, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फिट फाइन, आप क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? अच्छा, उसका झूठ मतलब पकड़ने के बाद आप उस बंदे पे एतबार नहीं करेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और वो आपको इतना ही अजीज होगा जितना झूठ बोलने से पहले
2: सच्चे था।
0: अच्छा, वो आपको उतना ही प्यारा होगा जितना झूठ बोलने से पहले आपको करीबी अजीज था आपका? चले अदा, आपकी कीमती राय हम तक पहुँची, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। भाई हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर है, अंडरस्टैंड करके जो है टॉपिक को फॉलो करते हैं। और न्यूज ब्रेक में अभी है, दो मिनट बाकी हैं, चले एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा
3: है?
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं कैसी हैं आप, कहाँ घूमे, काफी दिनों बाद ज्वाइन किया है, तबीयत ठीक है आपकी?
3: बाजी चल रही हूँ, लेकिन कार नहीं लग रही है।
0: अच्छा, वैसे आप बताएं महक, आप ठीक है?
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाजी आप सुनाओ।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या कहोगी आज के टॉपिक के हवाले से? अच्छा, आप भी उसका एतबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपका उस पे? अच्छा, फिर वो दिल में वही जगह रहेगी उसकी, या थोड़ा बहुत फर्क आएगा? हाँ, फर्क आ जाएगा, ये बात ठीक हो गया। मैं बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू चंदा, सबनी पारा, वालेकुम अस्सलाम, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर है, और ओल्ड बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, फिर खवातीन जो है वो चिढ़ जाएंगी, वो कहेंगी हमारी इतनी उम्र तो नहीं है जितनी ये कह रही है। तो हमारी अच्छी लिसनर है महक, हमारे साथ मौजूद, हमें सुन रही है, थैंक यू। गोर जाम खान लगा रही, अली रजा लगा रही, आकिब लगा रही, अजहर लगा रही, बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगर आपकी कॉल अटेंड होती तो आपसे भी हम पूछते, اس ٹاپک کے بارے میں, اور جانا پڑے گا, جبرن جانا پڑے گا لیکن جانا پڑے گا. چلیں جی, یہاں پر بریک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ, اور بریک کے بعد دوبارہ ہم اور آپ تیر سے ساتھ ساتھ پروگرام کے سیکنڈ اور میں سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیون جی.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: न्यूज तफ़सीलत करे था घुसल माली साल की भेट में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपये के कट लगाया वो तरक्याती बजट 1000 अरब रुपये में घटाए 720 अरब रुपया करने की तजवीज निच सूबाई तरक्याती बजट 520 अरब रुपये में घटाए 385 अरब रुपया करने की तजवीज डी वही जिले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपये जो कट लग नए माली साल में जिले तरक्याती प्रोग्राम लाए रुगो 15 अरब रुपया रखने की तजवीज डी वही सूबे जो गैर तरक्याती बजट 2560 अरब रुपया रखने तजवीज नए माली साल के तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करने जो फैसलो सूबाई ए जिले सतह से हलंदड़ 3642 रिथान में 400 अरब रुपया रखने की तजवीज वफाकी हुकूमत पारा 64 अरब रुपये की तरक्याती ग्रांट मिलने जो खातो लगाया वो है आलमी मालियाती इदारन का तरक्याती मनसूबों में मिलंदड़ पैसों की मद में 256 अरब रुपया मिलने जो अंदाजो लगाया वो। सिंध के नए माली साल के बजट में मकानी खाते और कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स लाए 99.76 अरब रुपया रखने की तजवीज ट्रांसपोर्ट खाते लाए 7.94 अरब रुपया तरक्याती बजट रखने की तजवीज सेहत खाते लाए 17.43 अरब और तारीम खाते लाए 25.86 अरब रुपया रखने की तजवीज आपाशी खाते लाए 3.80 अरब वक्स और सर्विस खाते लाए 31.89 अरब रुपया रखने की तजवीज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाए 40.86 अरब रुपया रखने की तजवीज सिंध नए माली साल लाए 2026-27 की बजट सुभाने सिंध असेंबली में पेश थी वो वजीर मुराद अली शाह बजट पेश कर। अमेरिका न हुए हा तो इसराइल जो वजूद भी न हुए हा तेहरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कई जहनम भरपा कर छड़ींदी अमरीकी सदर ट्रंप के कतरी अमीर तमीम बिन हमदानी से मुलाकात दौरान गाल बोल सदर ट्रंप चो तो अमरीका जो ईरान से कल मुआदो तेहरान के एटमी हथियार आडो भित बनल है ईरान से थियल मुआदो इंसाफ से बदल है रिजीम चेंज से को भी फायदो ना ईरानी क्यादत मकतूल है लबनान जंग मामूल तकरार है अमरीका ईरान में का भी सणपकारी न कंदो। लबनान के इसराइली कब्जो जारी रहो ते अमरीका से थियल मुआदो खत

तीनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के कर दिए हैं, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बेहतर क्वालिटी का हो गया है। आपके पास जो

कुमार सवाले भवरों का बाजी मुझी हिकड़ी गुजारिश आहे अब टोट के सेगमेंट में तवा के बाद जो मैसेज है वो आपका उड़ गया है यानी कि अधूरा मैसेज मुझ तक पहुंचा। आई डोंट नो आपने क्या लिखना चाहा है। बहुत शुक्रिया आपका आप शामिल प्रोग्राम हुए मैसेज तवा जो टेक्स्ट मिले किया है आप सबके लिए नाहिद अख्तर की आवाज में सुरीला गीत आप सबके लिए एंजॉय कीजिए। इस गीत के बाद होगा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको गेंद ज्वाइन करेंगे।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है कि स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। वो कौन सी चीज है जिसे देखने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ती है, सवाल का जवाब देने के लिए डायल करें 03136156888। आपकी कास को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब वेलकम कहेंगे, आपको कौन बात कर रहा
1: है?
0: अदा क्या जवाब है इस सवाल का? अरे वाह, दुरुस्त आंसर है अदा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके जी भाई, हमारे ये जो है ये अदा इकबाल की तरह अदा बचल शबानी जो है, इनका आंसर भी राइट होता है मेरे प्रोग्राम्स में कम से कम। तो इन्होंने राइट आंसर बताया है आंखें, वो कौन सी चीज है जिसे देखने के लिए उसी चीज की जरूरत होती है, तो जनाब राइट आंसर है आंखें।

2016 चल रहा है, हमारे यहाँ 2026 है, जबकि उनके यहाँ साल 2016 चल रहा है. आपको मालूम है उस कंट्री का, उस जगह का नाम.

0: आपके कुछ काल शामले प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वेलकम कहेंगी, कौन बात कर रहे
1: हैं?
0: खुश आमदीद कहते हैं आपको। और क्या जवाब है इस सवाल का? वो कौन सी जगह है जहाँ साल में 13 महीने होते हैं, इस वक्त वहाँ 2016 चल रहा है? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जब नहीं पता फिर आपने कॉल क्यों की है? अच्छा, आपने बताना होगा कि मोरो में भी प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है? आदा, आपको मालूम है इस सवाल का जवाब? राइट आंसर है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
2: थैंक यू भाजी।
0: और हमारे लिसनर्स को तो वैसे ही मालूम नहीं है जवाब, तो मैंने सोचा कि इनका जवाब हम शामले प्रोग्राम कर लें। एथोपिया है उस जगह का नाम जहां 13 महीने होते हैं। वो क्या चीज है जो इस्तेमाल के वक्त फेंक देते हैं और जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो उठा लेते हैं? सोचे जरा इस बारे में। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, शायद मैंने पहले भी ये सवाल पूछा है। वो क्या चीज है जब जो है इस्तेमाल के वक्त उसे फेंक दिया जाता है, जब उसकी जरूरत नहीं होती तो उसे उठा लेते हैं? कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब इस्तेमाल के वक्त फेंक देते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती तो उठा लेते हैं ना, ये आंसर राइट नहीं कहलाएगा। आप सवाल सुने ना, वो क्या चीज है जो इस्तेमाल के वक्त फेंक देते हैं? मछली का जाल भी हम फेंक देते हैं, जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो उठा लेते हैं। जरूरत होती है तो ही मछलियों को बाहर निकालते हैं ना, जब जरूरत नहीं होगी तो फिर कौन मछलियों को बाहर लेके आएगा इसी जाल से?
2: तो ये
0: पानी का ये भी नहीं है। थोड़ा सा गौर करें, आप आसपास ही हैं जवाब के। चलिए कोई मसला नहीं है अदाओ के। बहुत शुक्रिया, आपके जवाब हमेशा राइट ही होते हैं इकबाल लाशारी के। लेकिन कोई मसला नहीं है अदा, अगर आज नहीं गेस कर पाए तो इट्स ओके। और नेक्स्ट जो है वो क्या चीज है जो इस्तेमाल के वक्त फेंक देते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती है तो उठा लेते हैं, ये आपने हमें बताना है। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो कोई मसला नहीं है, हमें मालूम है, ठीक है। अब हम भी बता देंगे आपको अगर मालूम नहीं होगा तो। एक और कॉलर को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आपके पास तो बैलेंस मुक गया है, नेक्स्ट कॉलर को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहा है?
2: इजाइदरी बात कर रहा हूं, कुछ इशारे से।
0: खुश आमदीद कहेंगे आपको, क्या कहेंगे सवाल के जवाब में?
2: पर तो नहीं
0: जी, नहीं, शापर को इस्तेमाल के लिए जो है हम उठाते हैं और जब जरूरत नहीं होती है तो उठाते हैं। कौन उठाता है? आपको शॉपर की जरूरत नहीं होगी तो आप उठाएंगे उसे? चलें, बहुत शुक्रिया आपका, कोई मसला नहीं है। अगर आपने जवाब नहीं बताया तो खैर है, आपको कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला है अगर आप जवाब बताएंगे तो। अच्छा, सवाल मैंने पूछा था वो क्या चीज है जो इस्तेमाल के वक्त फेंक देते हैं, जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो उठा लेते हैं। तो मेरे अकलमंद लिसनर्स, मेरे पांचवी पास से तेज लिसनर्स।

अच्छा जो लास्ट कॉलर आई थी सिद्रा, उन्होंने कहा था सॉन्ग का, ठीक है, अब ये वही वाला गाना है आई डोंट नो। अब सिद्रा आपने इसी गाने पे गुजारा करना है जो

बेचने वाले से पूछा, इस अंगूर के गुच्छे की कीमत क्या है? बोला 120 रुपए किलो। पास ही अलग कुछ मुख्तलिफ टूटे हुए अंगूरों के दाने भी पड़े हुए थे, उसका भाव क्या है? वो कहने लगा 45 रुपए किलो। मैंने पूछा इतना कम दाम क्यों है? तो ये भी बहुत उम्दा। लेकिन उस वक्त ये बात माइंड में आई कि ये गुच्छे से टूट गए हैं और वाकई अपने खानदान से अलग होने पर हमारी कीमत भी आधी से भी कम रह जाती है। वाकईतन इत्तेहाद और इत्तेफाक में ताकत है। इत्तेहाद जब मिट्टी ने किया तो ईंट बन गई, ईंटों ने किया दीवार बन गई, दीवार ने किया घर बना। ये बेजान चीजें जब ये हो सकती हैं तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। थिंक अबाउट इट।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: न्यूज सिंधी बजट जा तफसील हद करे वरता गुजर 42 साल जी भेट में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए जो कट लगाए वो तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज निज सूबाई तरक्याती बजट 520 अरब रुपए मां घटाए 385 अरब रुपए करण जी तजवीज डी वही जिले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए जो कट लगो नए 42 साल में जिले तरक्याती प्रोग्राम लाए रुगो 15 अरब रुपए रखण जी तजवीज डी वही सूबे के गैर तरक्याती बजट 2560 अरब रुपए रखण की तजवीज नए 42 साल की तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करण जो फैसलो सूबाई ए जिले सतह से हल 3642 रिथाउन लाए 400 अरब रुपए रखण की तजवीज वफाकी हुकूमत का 64 अरब रुपए जो तरक्याती ग्रांट मिलने जो काथो लगाए वो आलमी मालियाती इदारन का तरक्याती मनसूबन लाए मिलंदड़ पैसों की मद में 256 अरब रुपया मिलने जो अंदाजो लगाए वो

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंधी नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जे मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99 अरब 76 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70 अरब 94 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स ऐं सर्विसिस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिंध जे नई माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर मुआद अली शाह पेश कंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कियानी सां गॾु बिलाल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते सबूरा ख़दशा ख़तम करण जी कोशिश। मुलाक़ात में नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान ऐं ॿिया बि मौजूद हुआ। सिक्योरिटी ज़रियनि चयो आहे त ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जी कामयाबी पाकिस्तान जी कामयाबी आहे। कुझु कुवतनि यूएई सां लाॻाप ख़राब करण जी कोशिश कई पर नाकाम रहिया। पाकिस्तान ॻाल्हियुनि वरी समूरी अमल में टियाकड़ी जो किरदार अदा कयो। पाकिस्तान जी कोशिश आहे त विच ओभर में मुस्तक़िल अमन क़ाइमु थिए। ॻाल्हियुनि दौरान मुंझारे जहिड़नि मामलनि खे पुजो रखियो वियो। अब्बास इराक़ची पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असरु नथो पवे। ॻाल्हियुनि जे नुक़्तनि खे पुजो रखणु ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ ज़रूरी हो। ॻाल्हियुनि दौरान राब्ते वारो अमल वज़ीर आज़म जे ज़रिए थी रहियो हो। समूरे अमल जी कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क़यादत ॾांहुं वञे थो। अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जान बर्पा करे छॾींदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी कतरी अमीर तमीम बिन हमद अलसानी सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। सदर ट्रंप चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो न आहे थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे। लेबनान जंग मामूली तकरार आहे। इसराइल खे लेबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। अमरीका ईरान में का बि सीड़पकारी न कंदो। लेबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआदो ख़तरे में पइजी सघे थो। लेबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो मुआदे जी भञकड़ी हूंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो।

वमी जोड़े मुबैना तौर फुलेरी वाह में टपो डेई छो नौजवान जो लाश हथ नारी की लाश की गोला जारी इलाके वासियन मूजिब नौजवान ए नारी गडल तौर से फुलियल केनाल में टपो डो हो पुलिस मूजिब शुरुआती जांच मूजिब जोड़ो एक बे के पसंद कद हो जांच जारी है। हैदराबाद में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ़ खातन के मुलाजमन जो एहतजाज पगार में महंगाई जो हिसाब से वाद करण जो मुतालबो सिंध के सरकारी खातन के मुलाजमन मुतालबन की मंशा लाए गडल एहतजाज किया मुलाजमन मूजिब महंगाई तमाम घनी है हुकूमत पगार में 100% वाद करे कराची में जाल के कत्ल कदड़ पीरसन अदालत में पहरी बयान दा फिरी वियो जवाबदार बयान में चयो था पुलिस कत्ल जो एतराफ करण लाए दबाव विझी रही है पुलिस चयो एतराफ कर त केस में बे कंहिंखे मुलविस ॾेखारींदासीं पीरसन शुरूआती बयान में जाल खे अमृतसरी तां इनकार करण ते कत्ल करण जो बयान ॾिनो हो अकिल भरसा जवाबदार पसंद जो पड़ो कदड़ नौजवान जो घर ड्राई पट कर मुबारकपुर थाने की हद में निहाल मोहतम आई पना खातून के घर के ड्राई पट किया नौजवान जो चवण है अदालत में पढ़ने बावजूद जवाबदार पुलिस से गड़ी घर ड्राई छो है जवाबदार कत्ल कर चाहन था तहफुज फराहम किया वे बनवा में वेठल भेण के कत्ल कदड़ जवाबदार भाव गिरफ्तार घोट कंवर बंगलाणी में 5 ढी अग वनवा में वेठल जन्नत खातून बंगलाणी के भाव कत्ल कयो हो पुलिस मूजिब कत्ल केस में मकतूल नारी के भाव जफरुल्लाह बंगलाणी के गिरफ्तार कर लाकुब कर छो है।

ਕੁੰਡੀ ਮੇ PPHI ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਅਮ ਦੌਰਾਨ ਫੋਤ ਵਾਰਿਸਨ ਜੋ ਧਰਨੋ PPHI ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ 6 ਬਾਰਨ ਜੀ ਮਾ ਕੇ ਸ਼ੂਕੂਲੀ ਵਿਅਮ ਦੌਰਾਨ ਫੋਤ ਥੀ ਵਈ ਵਾਰਿਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਇਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਗਫਲਤ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਣਦੇ ਮਿਰਪੁਰ ਖਾਸ ਕੁੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨੋ ਹਯੋ ਵਾਰਿਸਨ ਜੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਵਿਅਮ ਕਾ ਅਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜੈ ਸਬਬ ਔਰਤ ਫੋਤ ਥੀ ਵਈ नवाबशाह में शहरी जो बासन के जुल्म खिलाफ औरतों ने बाड़न समेत एहतजाज कैंप नंबर 2 के रवासी मर्द औरतों बाड़न समेत प्रेस क्लब अगर एहतजाज किया मुतासिन इलाके के बासर मानून असा हमलो किया जैमें 5 जड़ा जख्मी थी पाया पुलिस बासन के साथारी बढ़ल है नोटिस वी इंसाफ कर वे में मुफ्त में चोला न देण ता एलकार जो पोरियत ते मुबैना तशद्दुद पोरियत जो एहतजाज पोरियत मिठल अंसारी चयो ता सोरा थाने जे एलकार मुफ्त में चोला घुरिया इनकार ते उन तशद्दुद कयो एसएसपी खैरपुर वाकी जो नोटिस वठे एलकार खिलाफ कार्रवाई करे

0: साइंसन से अलवेले शायर हसन दर्द से विछोड़े के 15 वरे विरामी व्या शायरा नदीबन साफियन जे टंडो लयार में हसन दर्द जे आखिरी आराम गाते हाजिरी गुलन जी चादर चाड़ी दुआ घुरी शायरन नदीबन मूजिब हसन दर्द सिंध जो तमाम वडो शायर हो सदस वर्सी सरकारी सतह ते मलाई वने
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network, सिंध की आवाज

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GFM 88
1: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: गालियन वाले समूरे अमल में टाकड़ी जो किरदार अदा कियो। पाकिस्तान की कोशिश आए तो विच ओवर में मुस्तकिल अमन कायम थिए। गालियन दौरान मुंझारे जड़न मामलन के गुचो रखियो वियो। अब्बास राखजी पारा भारत के दौरे जो पाकिस्तान पे असर न तो पवे। गालियन के नुकतन के गुचो रखन गालियन की कामयाबी लाए जरूरी हो। गालियन दौरान राबते वारो अमल वजीर आजम के जरिए थी रो हो। समूरे अमल की कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क्यादत दां वने तो।

अमेरिका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम बर्पा करे छॾींदासीं। आबना हरमोस जुमे ॾींहुं खुली वेंदो, को बि टोल टैक्स न हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी फ्रांस में जी सेवन इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं यू ए ई सदर शेख ज़ायद बिन अल नेहान सां धार धार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। ट्रंप चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो न थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे, लबनान जंग मामूली तकरार आहे। इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। ईरान सां थियल माहिदे जो मुख्य ऐं अहम नुक़्तो इहो ई आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआदो खतरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो मुआदे जी बदकड़ी हूंदो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआदे ते बाज़ाबता तौर अमल जी शुरूआती जुमे खां थींदी। ईरान ऐं अमरीका में मुआदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार आहे। पाकिस्तान वॾी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम ईंदो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे।

जैसे आखिरी मैं खींचता यूं इस बार से कोई और है इस आईने में ये मैं तो नहीं कैसा दाग छोड़ता है प्यार के रंग निकलता नहीं मैं मौत से डरता नहीं मैं सड़कें नाप नाप के यूं तकिया क्यों घर मिलता नहीं मैं कब से बिखरा हूं अंधेरों में इन घेरों में दीवारों में दो आवाज फिर से पुकारो लेकर चलो मुझको

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: राखी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्जरलैंड में शुरू थींदो। मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआदे ते बाज़ाबता तौर अमल जी शुरूआति जुमे खां थींदी।

सिक्योरिटी ज़रियन चयो आहे त ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जी कामयाबी पाकिस्तान जी कामयाबी आहे। कुझु क़ुवतनि यूए सां लॻापा ख़राब करण जी कोशिश कई पर नाकाम रहिया। पाकिस्तान ॻाल्हियुनि वारे समूरे अमल में टाकड़ी जो किरदार अदा कयो। पाकिस्तान जी कोशिश आहे त विचोभर में मुस्तक़िल अमन क़ाइम थिए। ॻाल्हियुनि दौरान मुंझारे जहिड़नि मामलनि खे गुझो रखियो वियो। अब्बास इराक़ची पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असर नथो पवे। ॻाल्हियुनि जे नुक़्ते खे गुझो रखणु ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ ज़रूरी हो। ॻाल्हियुनि दौरान राब्ते वारो अमल वज़ीर आज़म जे ज़रिए थी रहियो हो। समूरे अमल जी कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क़यादत ॾांहुं वञे थो।

दुनिया में मुआहदे से पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वधियो आहे। पाकिस्तान वरी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम वेंदो। वज़ीर आज़म महफ़िल मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे।

नई माली साल जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रुपयनि जो कट लॻायो वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रुपयनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिहत खाते जी तरक़ियाती बजट 21 अरब रुपयनि मां घटाए 17 अरब रुपया करण जी तजवीज़। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में बि घटाई 38 अरब रुपयनि मां घटाए 25 अरब रुपया करण जी तजवीज़। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम में बि 40 अरब रुपयनि जो कट लॻंदो। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुॻो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सूबे जे ग़ैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। नए माली साल जे तरक़ियाती बजट में का बि नई स्कीम शामिल न करण जो फ़ैसिलो। KTN न्यूज़ सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरिता। तफ़सीलनि मूजिबि सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रुपया रखीस। वफ़ाक़ी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जूं तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो काथो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंध जी नई माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जी मेगा प्रोजेक्ट लाइ 70 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70 अरब 94 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़ वक्स ऐं सर्विस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिंध जी नई माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर मुराद अली शाह पेश कंदो।

वफ़ाक़ी हुकूमत बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़र्चा ख़त्म करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। नायब वज़ीर आज़म साकदार मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कियानी सां गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते समूरा ख़र्चा ख़त्म करण जी कोशिश। मुलाक़ात में नवीद कंवर, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ।

वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि वसीलनि में वाट ऐं टैक्स उघाड़ण बाबति इजलास। एक्साइज सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐं नाणे खाते जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। वज़ीर शाह पारां टैक्स उघाड़ण वारो निज़ाम वधीक सराहितो बणाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त वसीलनि में वाट अवामी फलाह, तरक़ियाती मनसूबनि ऐं बहितर ख़िदमतनि जी फ़राहमी लाइ अणटर आहे।

सिंध में कारें जी कुधी रसम तां वधीक हिकु नारी क़तल थी वई। कंबट जे ॻोठ सताबो में जवाबदार सोणो बारे जो कारा इल्ज़ाम हणी पंहिंजी सोट समिया बारे जो खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार जो नारी लारे क़तल बेट शाह जो जवाबदार फायरिंग करे भादई खे सख़्त ज़ख़्मी करे छॾियो। जरार शाह कॉलोनी में जवाबदार असाब कोसो गोलियूं हणी अंसार कोसो खे ज़ख़्मी कयो। पुलिस जो चवण आहे त औरत खे टे गोलियूं लॻल आहिनि। सेरी वारे इलाइक़े में प्रेमी जोड़े मुबैना तौर पुलेली बाह में टपो ॾेई छॾियो। नौजवान जो लाश हथ, नारी जी लाश जी ॻोल्हा जारी। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि नौजवान ऐं नारी गॾियल तौर ते पुलियल केनाल में टपो ॾिनो हो। पुलिस मूजिबि शुरूआती जांच मूजिबि जोड़ो हिक ॿिए खे पसंदि कंदो हो। वधीक जांच जारी आहे। हैदराबाद में सिंध हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ खातनि जे मुलाज़मनि जो एहतजाज। पघारनि में महांगाई जे हिसाब सां वाधि करण जो मुतालबो। सिंध जे सरकारी खातनि जे मुलाज़मनि मुतालबनि जी मञता लाइ गॾियल एहतजाज कयो। मुलाज़मनि मूजिबि महांगाई तमामु घणी आहे। हुकूमत पघारनि में 100% वाधि करे। सिंध हाई कोर्ट जी चंड ते दादू पुलिस टे महीना अॻु अगवा ॼणियल 18 महीननि जी भाड़ी राणी शाहाणी खे बाज़ियाब कराए वरितो। बेवा अमड़ नजमा शाहाणी हाईकोर्ट में न्याणी जी बाज़ियाबी लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। हाईकोर्ट SSP दादू खे तलब करे 2 ॾींहनि में न्याणी खे बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾिनो हो। SSP दादू सदाम हुसैन ख़ासि ॿुधायो त पुलिस कच्चे में छापो हणी नीगरी खे पंहिंजे ॾाॾणनि जे घरां बाज़ियाब करायो आहे। सुभाणे खेसि अदालत में पेश कयो वेंदो।

वनवा में वेठल वेण के कंदड़ जवाबदार मंगलाणी में पंज ॾींहं अॻु वनवा में वेठल जनत खातून मंगलाणी खे भाउ क़तल कयो हो। खैरपुर में बि गुज़िरियल राति क़तल कयल औरत गुलजान मीराणी वारे केस में जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस क़तल में मुलविस जवाबदार सोहेल अहमद मीराणी खे गिरफ़्तार करे वरितो। मीरपुर बुडोभर सां मुबैना तौर अगवा कयल नारी जी बासियाबी लाइ पुलिस जी चढ़ाई। घर में भजडा नारी हथ नारी कोट काबिल बुरड़ो मां अगवा थियल नारी मनसिया बुरड़ो जी बासियाबी लाइ घरनि ते चढ़ाई करे भजडा कई वई। पुठड़नि जो चवण आहे त पुलिस चढ़ाई करे 20 बकरियूं ऐं 4 मेहूं बि काहे वई आहे।

0: कुंडली में PPHI सेंटर ते औरत वियम दौरान फोत, वारिसन जो धरणो। PPHI अस्पताल में 6 बारन जी माउ केशु कूली वियम दौरान फोत थी वही। वारिसन अस्पताल इंसामिया ते गफलत जो इल्ज़ाम हणंदे मीरपुर खास कुंडली रोड ते धरणो हयो। 5 कलाकन बाद एहतजाज खत्म कयो वियो। वारिसन चयो त डॉक्टरणी वियम खां अॻु इंजेक्शन लॻाई जंहिं सबब औरत फोत थी वई। जिम्मे वारनि ख़िलाफ़ कारवाई कई वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मिटी जो तूफ़ान ऐं बरसाति, घरनि जा छपरा उॾामी विया। कश्मोर, बख्शापुर, उबावड़ो, मुरीदशाह ऐं ॿियनि शहरनि में मिटी जो तूफ़ान खां पोइ वस कारो। केतिरा ई वण किरी पिया, मवासिलाती निज़ाम बि धरम भरम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: मेरा फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पहजो शहर पहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे, हम कहां के सच्चे थे।
4: काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे,
5: आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता। शिकवा

0: कैसा महसूस हो रहा है?
1: उसे खो के जिसे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: तुम मुझसे बात करो।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेट

0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरता। तफ़सीलनि मूजिब सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाउनि लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जो तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो खातो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जे मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99 अरब 74 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70 अरब 94 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 80 अरब 80 करोड़, वर्क्स ऐं सर्विसिस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर फुआद अली शाह पेश कंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ममलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी सां गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते समूरा ख़दशा ख़तम करण जी कोशिश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ठाहींदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में बजट वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो।

चालीसार ॿसार छवीह सतावीह लाइ पंजाब जी 5,903 अरब जी बजट पेश। नाणे वारे वज़ीर मुश्तबा शुजा पंजाब असेंबली में बजट पेश कई। सरकारी मुलाज़मनि जी पघारनि में 7 ऐं पेंशन में 3.5% वाध जी तजवीज़। तरक़ियाती कमनि लाइ अरबे रुपया रखिया विया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लाइ 25,35 करोड़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाइ 19 अरब ऐं पुलिस लाइ 12,88 करोड़ रुपया रखिया विया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाइ 270 अरब। मास ट्रांसिट सिस्टम लाइ 26,60 करोड़। हारी कार्ड ऐं ज़री तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 10 अरब रखिया विया। अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम बर्पा करे छॾींदासीं। आपला हरमुस जुमे ॾींहुं खुली वेंदो। को बि टोल टैक्स न हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE सदर शेख जायद बिन अल नहान सां धारधार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। ट्रम्प चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो। रेजीम चेंज सां फ़ाइदो न थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे। लबनान जंग मामूली तकरार आहे। इसराइल के लबनान में जिम्मेवारी जो मुजाहरो करणो पवंदो। ईरान सां थियल मुआहिदे जो मुख्य ऐं अहम नुक़्तो इहो ई आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआहिदो ख़तरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो मुआहिदे जी भञकड़ी हूंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्शी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआहिदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआहिदे ते बाज़ाब्ता तौर अमल जी शुरूआति जुमे खां थींदी।

अमेरिका ईरान मफ़ामती याददाश्त ते सही वारो हंधु तब्दील। स्विट्ज़रलैंड जे परडे॒ही वज़ीर चयो आहे त हाणे तकरीब जनीवा बदिरां जिनिस्टाक में 19 जून ते थींदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वायदे के हथ में शकर देने लाए सालिसी टीमू ईंदड़ हफ्ते इजलास कंदियूं। शुरुआती वायदे ते बाज़ाब्ता तौर अमल की शुरुआत जुमे का थी। अमेरिका ईरान मफावती यादाश्त सही वारो हद तब्दील। स्विट्जरलैंड के परडेही वजीर चाहे तो हाँ तकरीब जनीवा बदरा जिनस्टाग में 19 जून से थी। सिक्योरिटी जरियन जो चवण है त ईरान अमेरिका गालियन की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। कुछ कुवतू यूएई से लगप खराब करने की कोशिश कई पर नाकाम रहा। पाकिस्तान गालियन वाले समूरे अमल में टाकड़ी जो किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिश है त विच ओवर में मुस्तकिल अमन कायम थे। गालियन दौरान मुंझारे जड़न मामलों के गुझो रखो वो अब्बास इराक़ी पारा भारत के दौरे जो पाकिस्तान से असर नो पवे। गालियन के नुकतन के गुझो रखण गालियन की कामयाबी लाय जरूरी हो। गालियन दौरान राबते वो अमल वजीर आजम के जरिए थी रो हो। समूरे अमल की कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क्यादत मने तो।

0: नई माली बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रुपयनि जो कट लॻायो वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रुपयनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिहत खाते जी तरक़ियाती बजट 21 अरब रुपयनि मां घटाए 17 अरब रुपया करण जी तजवीज़। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में बि घटाई 38 अरब रुपयनि मां घटाए 25 अरब रुपया करण जी तजवीज़। ज़िले जी तरक़ियाती प्रोग्राम में बि 40 अरब रुपयनि जो कट लॻंदो। ज़िले जी तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुॻो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सूबे जे ग़ैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।